एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

चार खाने में भर मता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। चार खानियों में भटकता हुआ यह जीव कभी भी पार नहीं लग सकता, रहट की तरह चक्कर लगाता हुआ यूं ही घूमता रहता है। सदगुरु के मिलने पर उनके दया उपकार और ज्ञान द्वारा भ्रम जंजाल से मुक्त हो जाता है। जग में युक्ति अनूप है साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है सदगुरु लागा कान। क्लेशों से मुक्त होने के लिए इस संसार में सबसे अनूठी युक्ति है संत महात्माओं की संगति और गुरु का ज्ञान। परंतु उसमें भी सबसे सुंदर बात यह है कि सदगुरु के वचनों पर कान दो, अर्थात उनके ज्ञान प्रवचन का अनुसरण करो। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक ना पाइए अरु इक इस ब्रह्मांड। इस संसार में सदगुरु के समान कोई नहीं है। सातों द्वीप नौ खंडों तीन लोकों और इस ब्रह्मांड में भी सदगुरु के समान कोई दूसरा नहीं है, अर्थात सदगुरु की महिमा सर्वोपरि है। उनके ज्ञानोपदेश से जगत का जो उपकार होता है वह किसी अन्य से नहीं हो सकता। सतगुरु महिमा अनंत है अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा का कोई पारावार नहीं है, वह तो अनंत और अगम है। सदगुरु ने हमारे जिज्ञासु मन पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। सतगुरु साचा सूरमा नख शिख मारा पूर, बाहिर घाव न दिखई अंतर चख ना चूर। सतगुरु सच्चे शूरवीर हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है और ना ही वे कहीं युद्ध करने जाते हैं। वे अपने प्रिय शिष्य की नख से शिखा तक की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने ज्ञान रूपी शब्द बाण से हृदय को चूर चूर कर देते हैं, लेकिन बाहर से उसके घाव दिखाई नहीं पड़ते। सतगुरु शरण न आवही फिर हो या काज, जीव खोय सब जाएंगे काल तिहूं पुर राज। जो जन सदगुरु की शरण में नहीं आते उनकी बार बार हानि होती है। बिगड़ी को बनाने वाले अर्थात जीवन के क्लेशों को मिटाने वाले तो सदगुरु ही हैं, वे यूं ही नष्ट हो जाते हैं क्योंकि तीनों लोकों में काल मृत्यु का राज्य है।

हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। बड़ा ही खूबसूरत गाना है स्वर्ग फिल्म का, गोविंदा साहब के ऊपर वो फिल्म आया गया है, बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई। फिल्म का नाम आता है, गाने का नाम आता है तो जहन में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जाती है। पिक्चर बनती है मुंबई, वो गढ़ है जहां लोगों की किस्मत बदलती है, जहां एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, यानी कि सबका एक संगम है। जब इस तरीके से मैंने एक छोटी सी रूपरेखा बना दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ही शख्सियत मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है संदीप जी। बहुत बड़ा अनुभव है, आप पेशे से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और थिएटर एजुकेटर हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है जो आगे चलकर अपना नाम कर रहे हैं, इनका नाम कर रहे हैं। तो फाइनली सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच गगन जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। सुनो शारदा 98.8 FM के सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक छोटी सी नाचीज हूँ, सेवा में आपके उपलब्ध हूँ।
3: क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई चीज मुझसे छूट ना गई हो, तो यही मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी शुरू हुई।
4: वैसे आपने सब कुछ बता ही दिया है, जर्नी को बताएं तो बहुत बड़ी जर्नी भी है और कह सकते हैं बहुत छोटी जर्नी भी है। जर्नी अभी चल रही है, अभी चलना सीख रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 98 में ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं अपने पापा के पास देहरादून में था और वहां पर एक एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी। मेरा फ्रेंड मुझे जबरदस्ती खींच के ले गया क्योंकि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था और छुट्टियों पर आया था। बस वो वर्कशॉप करी और वहां पर एक दिल को एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में ताउम्र करना चाहता हूं। बस वहां से मैंने सफर शुरू किया, पहले एक्टिंग को समझा, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, बहुत सारे प्लेस किए, फिर मौका मिला कि मैं NST की TI कंपनी में जॉब कर सकूं। वहां से मैंने और फाइनेंस टच की सीखे, मैंने इसके नुआंसेस सीखे इसके मैंने, और वहां से मुझे इसकी कला का एक माहीन चीज मुझे समझ में आई। और मुझे वहां पर यह भी

0: सिखाया गया कि टीचिंग क्या आर्ट है. बस फिर वहां से मैं मुंबई गया और मुंबई में मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और वहां पर भी मैंने थिएटर किया. मुझे मौका मिला एफटीआई 2004 में, वहां पर फिर से एक्टिंग का कोर्स खुला था
1: पुणे
0: में
1: जी.
0: तो रवि बासवानी जी उस वक्त वहां के डायरेक्टर थे, तो मुझे मौका मिला कि वहां पर हर साल सिलेक्शन प्रोसेस के 4 दिन का वर्कशॉप हम डिजाइन करें और उसको कंडक्ट करें. तो 2004 से लेके 10 तक हम वहां पर हर साल जाते थे. तो बहुत अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में बिहाइंड द कैमरा काम किया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है
1: जी.
0: तो लाइव शोज, बिहाइंड द कैमरा, थिएटर, टीचिंग, सब चीजें एक साथ चल रही थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं सीखना चाहता था. फिर मुझे मौका मिला, मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा का क्रिएटिव हेड रहा.
1: ओह
0: जी,
1: क्या बात है.
0: शुरुआती में 2008-2009 में मैं उसका क्रिएटिव हेड था
1: जी.
0: मैंने उसमें भी बहुत कुछ, एक उसमें जो एक सिंप्लिसिटी थी
1: जी,
0: और उसके जो प्रोड्यूसर है असित मोदी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे. फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ये टीवी में कहीं स्टक कर रहा हूँ, मुझे अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, बिकॉज वहां पर बहुत चीजें जो हैं एक ढर्रे पे चल रही थी. ये किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे आगे और अभी सीखना था. तो फिर मैंने वहां से सर को बोला कि मैं निकलना चाहता हूं, तो सर ने मुझे इजाजत दी. फिर मैं वापस थिएटर में आया, क्योंकि मैं
1: थिएटर मुंबई थिएटर में आया या
0: नहीं. मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि एफटीआई पुणे में मिस्टर पेंटल जी मिले थे, वो वहां के एचओडी थे. उन्होंने, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली से हो तो तुम मेरठ क्यों नहीं आ जाते. मैंने कहा सर मेरठ, अब उस वक्त मेरठ का नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या आता था, वहां क्या होगा.
1: वहां क्या होगा, सही कहा आपने,
0: वहां क्या होगा. सर मतलब मैं मुंबई आया हूँ, दिल्ली छोड़कर आप मुझे दिल्ली के पीछे बुला रहे हैं. हाँ. मेरठ. बट उन्होंने बोला कि वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर खोल रहा है, और एक बार तुम वहां पर आओ देखो
1: जी.
0: अगर तुमको अच्छा लगता है
1: काम करो,
0: काम करो. तो मैं इसी मन से गया था कि
1: देख लेते हैं
0: क्या है, दिल्ली मेरा घर है, तो यही सोच के घर चले जाएंगे और आ जाएंगे. लेकिन जब मैं गया और वहां की एनर्जी जो मुझे मिली और जो मैंने स्ट्रक्चर देखा, वहां के लोगों से मिला जो इसके पीछे थे, तो मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि जहां मुझे लगा कि यहां मैं बहुत कुछ कर सकता हूं. तो मैंने सर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. फिर वहां पर यंग लोग आते थे
1: जी,
0: तो हमारा जो अनुभव है, जो हमने सीखा है, हम उसको आगे रखते थे. और 6 महीने के कोर्स में हम एक फुल लेंथ नाटक भी करते थे और फिल्मों की ट्रेनिंग भी चलती थी, और पेंटल साहब से मैं भी सीखता था. तो उस वक्त मैंने वहां पर बहुत ऐतिहासिक नाटक किए, जो जिंदगी में शायद मैं भी करना चाहता था. मोहन राकेश का आधे अधूरे, या आप कहें कि आषाढ़ का एक दिन, तो ये सब नाटक हमने, अंधायुग, ये सब नाटक हमने वहां नए लड़कों के साथ किए और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करे.
1: क्या बात है, क्या
0: बात. बस उसके बाद फिर आगे सफर चलता रहा, मैं फिल्में भी करता रहा. 2016 के बाद मैंने वो वहां का सफर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया. फिर फ्रीलांस के तौर पर मैं अब टीचिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग, सब चीजें करता हूँ.
1: क्या बात है, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है. यूं कहें कि ये जो सफर रहा है माशाल्लाह सुहाना सफर रहा है. इसमें बहुत सारी कहें कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, और हर बात एक कहीं ना कहीं सीख भी देती है. जब आप मुझे अपना परिचय दे रहे थे कि NSDA आप ने किया है, NSD के साथ साथ मुंबई आप गए, टीवी सीरियल आपने किया, तारक मेहता बहुत बड़ा शो है उसके आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद घर वापसी आपने की, यानी कि बैक टू पवेलियन कह सकते हैं. और जब बैक टू पवेलियन आप हुए तो उसमें भी एक अच्छा सफर आपका शुरू रहा, मेरठ में जो IFTI है उसके आप हेड भी रहे. तो ये जो अनुभव है मैं समझता हूं कि आज हमारे स्टूडेंट्स को काम आने वाला है, जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें, किन किन बारीकियों को वो सीखें, कहां से सीखें, ये सारी बातें हम आप साथ जानेंगे जरूर. सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं संदीप जी, और बहुत सारी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई. तो ये जो अनुभव है हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ.

0: ए बाबू मोशाय, ये जिंदगी उस ऊपर वाले के हाथ में है रे। कब न जाने कौन इस जमीन से उठ जाए बाबू मोशाय। कुछ ऐसा ही अंदाज था राजेश खन्ना साहब का, और यहाँ डायलॉग मुझे धुंधला धुंधला याद था, तो बस मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, एक एडिटर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल की, एक विद्यालय की बहुत खास जरूरत होती है। और शारदा विश्वविद्यालय का शारदा स्कूल ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। और इसी बीच में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक संदीप महाजन, जो कि पेशे से बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोफेशनली इन्होंने एक विधिवत विद्यालय से शिक्षा लेते हुए मुंबई गए। मुंबई के साथ साथ उन्होंने तारक मेहता के आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद IFTI जो कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है मेरठ में, आप वहां पर एज अ HOD के पद पर आपने वहां काम किया। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: संदीप सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर किसी का ख्वाब होता है, ये चकाचौंध की दुनिया है कि मैं एक्टर बन जाऊं, लोग मुझे जाने पूछें, मेरे साथ ऑटोग्राफ, मुझसे ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ सेल्फी लें। इसके पीछे जो मेहनत है वो शायद लोगों को नहीं दिखती, या दिखती है तो आम भाषा में कहें कि वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों उग जाए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसके बारे में आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अगर अपने अंदर एक आर्ट नजर आता है, पहले उसको पहचानना बहुत जरूरी है, फिर उसके पीछे की मेहनत उस हिसाब से की जाती है।
0: जी,
1: आपको सिंगर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, या आपको एडिटर बनना है, या आपको रेडियो जॉकी बनना है।
0: जी, जी।
1: जैसे कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं।
0: थैंक यू।
1: तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है। कभी कभार आप खुद उसको फाइंड आउट करने लगते हैं तो शायद बहुत समय लग जाता है उसको करने में। इसीलिए ये विद्यालय आपको काम आते हैं। जैसे आपने बताया कि शारदा का खुद एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। करते करते आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में होता है, रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन हैं, वो अपने टाइम पे ना बॉलिंग किया करते थे और उनको बॉलिंग करना पसंद था, वो बैटिंग नहीं करते थे इतनी। तो उनके कोच ने एक बार उनको बैटिंग के लिए ओपनर भेज दिया, तो उस वक्त जो उन्होंने किया वो आज हिस्ट्री बन चुका है। अब वो टॉप के बैट्समैन बन चुके हैं। वो बनना चाहते थे बॉलर
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो एक बेस्ट बैट्समैन है
0: जी।
1: तो इसी तरह की आर्ट जो आपके अंदर चाहिए, वो मेहनत ऑफकोर्स है, जैसा कि आपने कहा, तैयारी चाहिए, लेकिन उस तैयारी के पीछे आपको जो गाइडेंस चाहिए वो एक टीचर ही दे सकता है।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि खुद को पहचानो
1: जी,
0: यानी कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ जो आपने बात की, गुरु की जो महिमा है, जो उसकी काबिलियत है कि दूसरों को पहचानना, उसके बाद उस बात को सुने, जाने, समझे, और फिर वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सर, आज के समय में हम देखें कि लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते,
1: समझ में नहीं आता है कि वो अपने ऊपर मेहनत करे क्या। जब आप बोलते हैं ना कि मेहनत करना है, तो वो सोचते हैं कि भाई आप हमें बता दो, हम कर देंगे।
0: मेहनत कि सुनने को भी राजी नहीं है।
1: नहीं, आप हमें बता दो, आप हमें बता दो कि हमें ये चश्मा उठा के यहां से यहां रखना है, हम रख देंगे
0: जी।
1: बट मेहनत वो नहीं है ना। मेहनत सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेहनत ओवरऑल पर्सनैलिटी पे है। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: अच्छी संगत में आना पड़ेगा, अच्छा देखना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे। ये जैसे कि एक कहे कि एक तरह की डेली प्रैक्टिस है, सिर्फ एक दिन का काम नहीं,
0: क्या
1: एक महीने का काम नहीं।
0: बहुत खूबसूरत।
1: ये ताउम्र आपको जिंदगी में रखना पड़ेगा।
0: सर, इसी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों का धैर्य टूट जाता है
1: जी।
0: कई लोगों ने इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत समय दिया है और आज वो अपना काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है। NSG से वो पास आउट रहे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उन्होंने की, छोटा छोटा अभिनय किया, और आज जब वो हम देखते हैं कि वो एक ऐसे मुकाम पर है कि उनका एक उदाहरण दिया जाता है
1: जी। जी।
0: तो लोगों को लगता है कि, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने छोटा सा कोर्स कर लिया और उसके बाद हम मुंबई चले जाते हैं, और समय जब ज्यादा लग रहा होता है, या हो सकता है कि वो उन्होंने अपने आप को पकाया नहीं है, तो फिर लगता है कि नहीं यार, हम ये नहीं कर सकते, मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, कितना धैर्य बहुत जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धैर्य। देखिए एनएसडी की मजबूरी है कि वो एक एन नंबर ऑफ बच्चे ही ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है जहां से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। इसी तरह से एफटीआई पुणे है या एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, अब तो बहुत सारे वेन्यूज खुल गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा, जैसे मनोज वाजपेयी जी ने एनएसडी में 3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ। आज वो भी तो सफल एक्टर।
0: सही बात है
1: कि नहीं? उन्होंने अपने आप को खुद तैयार किया है। उनको एक उनके गुरुजी मिले, वो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, वो दिल्ली शहर में आए, उन्होंने अपनी मेहनत करी, पकाया और वहां से उठा के उनको ले गए शेखर सुमन जी। याद है उनकी पहली फिल्म शेखर सुमन जी के साथ जो उन्होंने करी थी, और उसके बाद रामू जी ने वो फिल्म देखी और उस फिल्म के 4 साल बाद मनोज वाजपेयी रामू सर से मिले और रामू सर उनको 4 साल से ढूंढ रहे थे। कमाल की बात है ना। और उनके सामने बैठे रामू सर उनको पहचान नहीं पाए कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। वो कैरेक्टर इतना जबरदस्त किया था उस फिल्म में उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि आप अपने आप को तैयार, डेफिनेटली हमें गाइडेंस की जरूरत है कि तैयारी कैसे की जाए। लेकिन आज वेन्यूज बहुत खुल गए हैं, आज YouTube का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आपके लिए पढ़ने के लिए सामने सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन हम देखते क्या है? रील्स।
0: सही बात है।
1: रील्स। तो आप जब रील्स देख रहे हैं और फेसबुक को स्क्रॉल करे जा रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है?
0: जी,
1: चीजें आगे करते जाओ, बस आगे करते जाओ, बस आगे करते, ठहराव और धैर्य खत्म।
0: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि दोस्तों जिस तरीके से एक आंसर की उम्मीद थी, बहुत खूबसूरत सर ने जवाब दिया है कि ठहराव, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं वहां पॉज की बात होती है और जिंदगी में ठहराव की बात होती है, यानी कि सोच के समझ के एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि यहां मेरी कोई कमी पेशी रह गई है तो निश्चित तौर पर जो आपके टीचर रहे हैं, जो उस्ताद रहे, उनसे जानिए, समझिए, अपनी कमी को खूबी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर फतह आपकी जरूर होगी और आपकी मंजिल आपको मिलेगी जरूर। और क्या है खास जानेंगे जरूर संदीप महाजन जी से, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ये सारी बातें हो रही हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप महाजन जी, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर एडुकेटर हैं और बहुत समय इन्होंने इंडस्ट्री में दिया है, अपने आप को तपाया है, अपने आप को झोंका है और उसके बाद इंसान एक कहते ना कि बनकर निकलकर निखरकर सामने आता है। राह से भटकना इंसान को मैं समझता हूं कि पीछे लेकर चला जाता है और राह पर चलेंगे, समय देंगे, जिसके बारे में सर ने एक एग्जांपल दिया मनोज वाजपेयी का, जिक्र मैंने किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने अपने ऊपर समय लगाया, एक रास्ते पर चलते रहे, मेहनत की, वर्क अपने ऊपर किया, तब जाकर वो आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सर, जो लोग भटक जाते हैं, जो अभी आप और हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे, उनको लगता है कि मैं एक्टर बनने आया था, एक्टर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, एडिटिंग कर लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, तो ये जो लाइन चेंज करते हैं लोग बाग, ये कितना सही है कितना गलत है?
1: देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मुंबई शहर जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है वो है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के तौर पर बहुत सारे एक्टर बहुत पीछे रह जाते हैं।

0: इसलिए फिर वो फील्ड चेंज करते हैं क्योंकि उनको वहां सर्वाइव करना होता है। एक तरह से कहें इसमें कुछ अच्छा भी होता है और एक तरह से कहें कि कुछ चीजें पीछे भी रह जाती हैं। जब कुछ वो और चीज ढूंढते हैं तो उसमें उनको एक नई चीज मिलती है कि इसमें लगता है कि हाँ ये चीज तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ
1: जी,
0: तो वो चीज वो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, यानी कि उस शहर से बाहर निकलें। क्योंकि मेरा मानना यह है एक्टिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं होती है।
1: क्या बात,
0: आप इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वेन्यूज बहुत बड़े हैं, सिर्फ इंडिया में एक्टिंग नहीं होती है, इंडिया से बाहर भी एक्टिंग होती है। एक लिमिटेड साधन फिल्म नहीं है, वेब सीरीज नहीं है। अगर वाकई में आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपना छोटा मोटा थिएटर ग्रुप खोल के भी एक्टिंग कर सकते हैं। आपको एक्टिंग से प्यार है कि नहीं है, सवाल ये है।
1: क्या बात, जो आधार है, एक्टिंग
0: आधार है। आपके मन में अगर ये बात आ गई कि यार इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता,
1: है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
0: तो आप रास्ते निकालेंगे।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिक्र आता है कि थिएटर का, रंगमंच का, मैं समझता हूँ कि रंगमंच से अगर आप निकल कर गए हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सशक्त अभिनय कर सकते हैं और मजे हुए कलाकार हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि बहुत शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, सगे संबंधी किसी के हैं, उन्होंने रंगमंच किया नहीं है, थिएटर किया नहीं है, तो हम एज अ दर्शक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। एज अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उन लोगों के बारे में जो रंगमंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिना रंगमंच के, बिना थिएटर के काम कर रहे हैं?
0: देखिए, सब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है,
1: काम कर रहे हैं, सही बात है।
0: और देखिए, जिनको प्यार है वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना एक सीखने का दायरा बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो टीवी में काम कर रहे हैं वो अच्छे एक्टर नहीं, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है और कुछ टाइम बाद काम करने की फिर वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है उनको।
1: तो यानी कि आप सीधे लफ्जों में अगर हम कहें तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने आप को तपाना बहुत जरूरी है। आपने, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते करते सीख जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: कुछ लोग तो ताउम्र गुजर जाती है, सीखते ही नहीं है, और दर्शकों को उनका अभिनय पसंद नहीं आता, इसलिए चल रहे हैं कि आपके सगे संबंधी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ काम मिल रहा है।
0: जैसे कि आप इस प्रोफेशन में हैं, आप जब रात को सोते हैं तो एक अच्छी नींद सोते होंगे कि मैंने आज जो काम किया उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हैं
1: जी।
0: तो इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो काम सीखेंगे आप जरूर, आप रोज सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे।
1: क्या बात है। सो लिसनर्स, कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है, सर का आशय यही है, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर कोशिश मेहनत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो रुपया आपके पीछे पीछे आएगा, जो कि जरूरत है, नो डाउट रुपया आएगा, एक न एक दिन आपको रुपया मिलेगा और आपको आपके काम से जाना जाएगा, काम होगा तो निश्चित तौर पर दाम भी आपको मिलेगा जरूर, और वक्त ये आता है कि मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है और डायरेक्टर देते भी हैं। इसलिए बस अपने आप को तराशिए, अपने आप को तलाशिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या रेडियो जॉकी बनना है। शारदा विश्वविद्यालय भी आपको ऐसी कोर्स ऑफर करता है और बस यही कहूंगा कि अगर आप इधर उधर कहीं भी यहां आना चाहते हैं तो यहां का माहौल देखिए, फैकल्टी से मिलिए, लोगों से मिलिए, प्लेसमेंट के बारे में जानिए, और जब इस तरीके के गेस्ट हमारे यहाँ विजिट करते हैं, संदीप महाजन जी जैसे जो कि खुद का अपना एक थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे जरूर। सो बस कहूंगा सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM।

0: यानी न ढाल से न तलवार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से।
1: सर हमने भी अभिनय की जब दुनिया में आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मिमिक्री मैं भी कर लेता हूँ। अभिनय तो नहीं है लेकिन हाँ नो डाउट यहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है। अभिनय हम जरूर सीखना चाहते हैं और जो बारीकियां आपने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई हैं, वो बारीकियां मैं भी अपनी जिंदगी में ध्यान रखूंगा। लिसनर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप महाजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। NSD से आप पास आउट रहे हैं और IFTI पुणे से भी आप पास आउट हैं। तारक मेहता का एक क्रिएटिव हेड के तौर पर आपने वहां काम किया, फिर आप एज अ डायरेक्टर IFTI जो कि मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है सर, वहां पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो हमें लेनी होती है अनुमति और एक सारांश निकालना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है, ये चर्चा हमारी कैसी रही और हम आपकी तरफ से एक संदेश जानना चाहते हैं। लेकिन सर बिफोर संदेश, बिफोर मैसेज, मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री जिस तरीके से हमें दिखती है बहुत साफ सुथरी, ऐसा है भी नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि शोषण भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, लड़के भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, हताशा भी है, परेशान भी है। तो इस तरीके के माहौल से कैसे वो अपने आप को बचाकर आगे बढ़े। कल परसों मैं एक सुन रहा था, उपासना सिंह जी जो कि बहुत बड़ी एक्टर रही हैं, कहती हैं कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आपसे फेवर चाहिए और वो फिल्म को उन्होंने ठुकराया, अनिल कपूर के साहब के अपोजिट वो फिल्म थी, और वो कहती हैं कि काश मैं, मेरे साथ वो हादसा ना होता तो मैं आज अनिल कपूर की एक्टर होती। हादसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि कुछ गलत आशा की गई थी उनके साथ, गलत काम की उम्मीद की गई थी, जिस मैं यहाँ अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूँ। तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को आगे लेकर जाए और इस माहौल से कैसे बचाकर वो अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करे।
2: देखिए सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूं, मैंने NSD की TI कंपनी में जॉब किया था
1: जी,
2: रेपेटरी कंपनी है उनकी
1: जी,
2: उसमें मैं जॉब करता
1: जी, जी जी।
2: अब आपकी बात पर आते हैं, देखिए ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है
1: जी,
2: मैं क्या करने आया हूं, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। शॉर्टकट वही लेता है जिसको अपना रास्ता खुद निकालना नहीं आता है या जो अंदर से कमजोर होता है। उस वक्त जरूर आपको यह लगता है कि मैं इसका एक्टर होता हूं, मैं उसका एक्टर होता और मैं इसका एक्टर होता। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना रास्ता खुद निकालिए। आपको बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी मिलेंगे
1: जी,
2: पेशेंस रखिए। यह आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जैसे कि आपने उनका उपासना जी का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने वो छोड़ा, वो उनका फैसला था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उनको रिग्रेट नहीं होगा कि उन्होंने वो नहीं किया। अनिल कपूर नो डाउट खुशी होती उनके साथ काम करते, लेकिन इस कीमत पे काम करना
1: सही का किसी को गवारा नहीं है।
2: अगर उनको गवारा नहीं है, ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। डिसीजन आपका है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपको कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता, आपके सामने एक ऑफर रखते हैं। ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती है।
1: क्या बात है। हाँ हम तो हिल गए क्योंकि ऐसा भी होता है, ये जानना समझना बहुत जरूरी था और आपने वाकई बखूबी इस सवाल का एक आंसर रखा कि जिंदगी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इंसान को सोच के समझते हुए आगे बढ़ना है और अपना भी ख्याल रखना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है।
2: बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा खुद का अपना थिएटर ग्रुप है,
1: प्लीज बता रहे
2: हैं थिएटर स्टूडियो करके।
1: हाँ
2: ये ग्रुप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर के तौर पे क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैं अपने इस आर्ट को आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, जो मैंने इतने सालों में एक गुण सीखा, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो इस कमी ये कमी मुझे महसूस होती थी कि कोई आकर मुझे बताए कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता था। तो वो कमी मेरे को महसूस होता है कि मैं जितनों को दे सकता हूं मैं दे दूं। तो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मैं मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनके अंदर झांकने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई में वो एक्टर बनना चाहते हैं
1: जी,
2: या सिर्फ वो फेम की वजह से आ रहे हैं।
1: शौकिया जी,
2: ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्टर की जिंदगी में 24 घंटे मेहनत है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो आप तराशते हैं, निखारते हैं, ये जो सिलसिला है निरंतर चलता रहे। और आपका संपर्क सूत्र नंबर यानी कि कांटेक्ट नंबर भी मैं जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए जो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें, तो आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि वो थिएटर करें, आपके पास आए, आपसे सीखें।
2: जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9968135423। इंस्टाग्राम में अकाउंट है कैमरा एंड थिएटर स्टूडियो के नाम से ही। और साथ ही साथ मैं जाऊंगा कि मैं शारदा जी के साथ भी जुड़ूं, उस यूनिवर्सिटी, इस फिल्म स्कूल के साथ भी जुड़ूं, और इस आर्ट को अगर मैं किसी भी तरह क्या आगे दे सकता हूं तो मैं देना चाहूंगा।
1: बहुत खूबसूरत सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। और यही मैं जानना चाह रहा था कि शारदा विश्वविद्यालय का जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रख दी कि आप यहां से जुड़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जैसे टीचर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तरफ से बहुत कुछ हीरो को निकाल कर लेकर आ पाएंगे और जो कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी हाँ, अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय का फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल आपका बाहें फैलाए इस्तकबाल करता है, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा संदीप महाजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें आपने कही। जी प्लीज कुछ कहना
2: चाहते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं या आप हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर कैरेक्टर के अंदर फाइंड आउट करता है। फिल्म कैरेक्टर से बनती है, हीरो से नहीं, क्योंकि हीरो की जिंदगी बहुत छोटी होती है।
1: क्या बात है, ये देखिए देखिए ये छोटी छोटी बातें लिसनर्स, जो अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, लिसनर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके।
1: थैंक यू सर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं और बस यही कहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।

0: Bingo on Malaysia card, the end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम।
3: धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा।
4: ऋषिता आई एम सॉरी, लेकिन भाई से बढ़के कुछ नहीं।

0: आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं को दिक्कत परेशानी ना हो। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:10 हो चुके, 17 तारीख है, बृहस्पतिवार, बोले तो गुरुवार का दिन। ईश्वर से यही प्रार्थना कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे। और गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है पूरे 7 रोज हफ्ते रोज तक जो चलने वाला है, उस उत्सव की बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो चारों तरफ धूम है वो देखते ही बन रही है, चाहे वो अंबानी हो, आम जन हो, कोई भी, जो श्रद्धा भाव है वो देखते ही बन रहा है। तो बस यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो ऑन रोड हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर हम लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं और जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए सोचकर समझकर संभलकर ऑन रोड चलेगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल दिल्ली NCR में मौसम का जो मिजाज है वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद सहित पूरे दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तेज हवाओं की अगर हम बात करें तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है। हाँ, टेंट तंबू अपने तान लीजिएगा, मतलब कश के पकड़ के रखिएगा, हवा में उड़ना जाए। और तापमान की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिएगा। नॉलेज पार्क का जो गोल चक्कर है, एक्सपो मार्ट के आसपास क्या गतिविधियां हैं, वहां कौन सी एग्जीबिशन लगी हुई है, पार्किंग कहाँ है, फैसिलिटी क्या क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन सुरक्षित चलिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, शैतानिया मत करेगा। टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी शैतानिया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaskar, main Amitabh Bachchan bol raha hoon. Maine TV ko bahut kareeb se dekha hai aur haraya bhi hai. Sahi suna aapne. बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो. पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया. इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा. बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए. यही है इसका पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए. इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
6: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
5: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
6: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
5: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
7: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, हेल्थ की बातें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर आपका, यूं कहें कि आपकी सेहत पर फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि शाम का वक्त यानी कि ढलने लगा है, बहुत जल्दी सूरज छिप जाता है। शाम के वक्त आप महसूस करते हैं कि ठंडी ठंडी ज्यादा है, सुबह के वक्त में ठंडी ठंडी ज्यादा है, लेकिन दोपहर के वक्त में आप महसूस करते हैं कि उमस ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, और यहीं से विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं, आज ही मतलब सर्दी खांसी जुकाम की शिकायतें हो जाती है। सो प्लीज, आप बड़ी सलामती के लिए, आपकी दुआओं के लिए, मतलब कहते हैं ना, आप दुआओं से मांगे गए और आपकी सलामती के लिए दुआएं की जाती है। सो प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, ब्रेक में जाने से पहले मैंने बात की थी कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगा नोएडा एक्सपो सेंटर के बारे में, क्योंकि यहां पर एक मेला चल रहा है।
9: मेला दिलों का,
8: नहीं अंताक्षरी नहीं करनी, अच्छा सिर्फ अपडेट देनी है। हाँ, सिर्फ अपडेट देनी है। 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया, ये यहाँ हो रहा है और इसमें बहुत सारी मशीनें आई हुई हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की मशीनें हैं, माइनिंग मशीनें हैं और 10,000 से भी ज़्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ आ रहे हैं और जो आगंतुक हैं यानी कि जो गेस्ट हैं वो भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था है और गलगोटिया कट से एक्सपो मार्ट गोल चक्कर होकर IFC गोल चक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया जा सकता है और ये वाहन एक्सपो मार्ट गोल चक्कर से बड़ा गोल चक्कर शारदा गोल चक्कर होते हुए LG गोल चक्कर से जगत फार्म की तरफ होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।
9: आजी हमने बता दिया, अब आप मत बताओ।
8: सच बात तो ये कि गोल चक्कर के आसपास हर रोज जाम के जाम की स्थिति बनी रहती है और शारदा विश्वविद्यालय के आगे भी, हॉस्पिटल के आगे, वहां पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है, खासकर शाम और सुबह के वक्त में। तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, बस लेन को फॉलो करेंगे, ओवरटेक ना करें, गलत दिशा में ना चलाएं अपने व्हीकल को और एम्बुलेंस को रास्ता दें।
9: शाबाश जियो, गुड जॉब मेरे लाल।
8: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
9: हैव अ नाइस डे अंग्रेजी में।

0: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि सही पोषण देश रोशन, और कुपोषण ना रहे इसके लिए जरूरी है कि अच्छा खान पान हो, अच्छी सोच हो, तो निश्चित तौर पर आप सब हेल्दी रहेंगे और सेहत सही तो लाभ गई। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर पहले हम बात कर रहे थे कि नोएडा एक्सपो सेंटर में मशीनों का मेला लगा हुआ है, जिसको नाम दिया गया बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2026। इसी के मद्देनजर रखते हुए कुछ डायवर्जन किए गए हैं गोल चक्कर के आसपास, जाम की स्थिति बनी रहती है सुबह और शाम के वक्त में। अब अपडेट निकलकर ये सामने आ रही है कि अगर आप इस तरफ आ जा रहे हैं तो बहुत सोचकर समझकर संभल कर आएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको न हो। नासा पार्किंग आप लोगों के लिए फ्री है।
4: पूछता है भारत इसरो नाम क्यों नहीं दिया गया।
3: हाँ ठीक है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस, फायर सर्विस और जो आपातकालीन व्हीकल हैं उनको बिना किसी रोक टोक के उनके मतलब प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर उनको निकलने दिया जा रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल है, स्ट्राइक है, और जिसकी वजह से आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसके जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा राउंड के लिए मेट्रो को कहा गया है ताकि आने वाले जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें इनको नज़रअंदाज ना करेगा। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे, आज एक खास दिन है, खास उत्सव है, मशीनों से ही रिलेटेड वो कौन से देवता हैं जिनकी आज पूजा हो रही है, जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, बाय। साकिब नबी ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी, वादा किया था कि ब्रेक के इस पार आएंगे तो हम बात करेंगे आज जिनकी जयंती उनके बारे में। आज है विश्वकर्मा जयंती और आज के दिन इंजीनियर्स वर्कर्स अपनी मशीनों को कंप्यूटर्स को अपने व्हीकल को उनके औजारों को साफ करके उनका पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं और हर फैक्ट्री में ऐसा ही कुछ माहौल है। कहीं कहीं छुट्टी है लेकिन सभी लोग इस दिवस को इस दिन को बड़ी अच्छी तरीके से मना रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11:45 बजे तक एक मुहूर्त है और उसके बाद दोपहर का मुहूर्त है 12:15 से लेकर 1:45 बजे तक और शाम के बारे में भी मुहूर्त कुछ इस तरीके से अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, यानी कि सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। तो कुल मिलाकर आप 1 बजे तक पूजा कर सकते हैं और विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके काम धंधे सुचारू रूप से चलते रहें, कहीं कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं विश्वकर्मा जी से, क्योंकि इनको सृजन का जो श्रेय जाता है वो जाता है विश्वकर्मा जी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं गगन।

0: साथी एल्बम शब अरिजीत सिंह की आवाज ऑल योर सुरु शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। वादा स्टूडियो क्लॉक 9:50 हो चुके हैं। 17 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से, विश्वकर्मा भगवान से यही दुआ, यही प्रार्थना है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे। विश्वकर्मा जी को जो श्रेय जाता है वो एज अ शिल्पकार श्रेय जाता है और ब्रह्मा जी को भी सृजनकर्ता कहा जाता है। तो एज अ उनको यानी कि सृष्टि के वो रचयिता हैं जिन्होंने आपको, मुझे, नेचर को, जीवों को, हम सबको बनाया है। तो बस ईश्वर का, खुदा का, पिता परमेश्वर का ध्यान रखते हुए बस आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन ऑन रोड भाई और बहनों, जब आप चल रहे हैं तो यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए और क्या अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खास बात निकलकर ये सामने आ रही है कि अभी कुछ रोज पहले जेवर जो टोल प्लाजा है उसका जिक्र हुआ था, सुनने में ये आया था कि टोल फ्री यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि ग्रेटर नोएडा और जेवर के आसपास के गांवों के जो लोग हैं, जो पात्र हैं यानी कि जो योग्य हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी मिलने जा रही है। योग्य से मतलब यह है कि जो वहां आसपास रह रहे हैं उनके पास जो कागज हैं। 17 सितंबर यानी कि आज से जेवर टोल प्लाजा पर टोल फ्री जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसकी सुविधा शुरू हो चुकी है और इसके लिए जरूरी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होना अनिवार्य है। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि जेवर पर नया टोल प्लाजा पर पुराना जो कहते हैं ना टोल प्लाजा था वो नहीं होगा।
1: अब उसके बदले ANPR
0: यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए वाहनों की गति रोके बिना सीधे फास्टैग से टोल कट जाएगा।
1: मतलब कटेगा तब भी?
0: हाँ बिल्कुल कटेगा।
1: तो फिर मतलब हम टैक्स नहीं देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा?
2: पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।
1: फालतू गाना सुनते हैं
0: सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं

0: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ये शारदा विश्वविद्यालय के SSMFE यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का एक पार्ट है जहां स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाते हैं और इंडस्ट्री में जब वो पहुंचते हैं अपना नाम रोशन करते हैं और निश्चित तौर पर अपने स्कूल कॉलेज को वो कभी भूलते ही नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि जेवर टोल प्लाजा पर जो लोकल लोग हैं उनका जो आवागमन है फ्री करने के लिए वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके अलावा दूसरी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि आने वाले समय में ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए वाहनों को बिना रोके हुए उनका टोल कटेगा। दूसरी बात, प्रदूषण नियंत्रण यानी कि NGT के नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने नोएडा ग्रेटर नोएडा में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और जिसके तहत 650 से प्लस पुराने वाहनों को जब्त कर किया गया और स्क्रैपिंग के लिए भी भेज दिया गया है। और ध्यान रखने वाली बात है कि NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। ये अभियान अगर हर रोज चले तो ऐसी चीजें बहुत निकल कर आएंगी, बिल्कुल निकल कर आएंगी। फिलहाल आज क्या खास उसके बारे में भी जान लेते हैं। आज है विश्वकर्मा जयंती और आज है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्मदिन है। उनको भी जयंती की बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और देश को यूं ही आगे लेकर जाते रहें। हमारी दिली दुआएं शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वर्ष 2047 तक भारत को जो विकसित भारत बनाना है तो उस यज्ञ में हम सब की आहुति, यज्ञ की कितना आहुति देना बहुत जरूरी यज्ञ में है ना, है ना। वक्त का इशारा इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड

का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां, जब हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मान लीजिए अगर आप बीमार हैं तो आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उन कामों की वजह से जो आपसे लोग जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो उनका काम भी प्रभावित होता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं, कई बार उनका काम मारा जाता है, तो कितनी हानि होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हमसे जुड़े हुए होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उनका असर हम पर तो होता ही होता है, हमसे जुड़े अन्य लोगों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसको सही कराने में पैसा लगता है और हम काम पर भी नहीं जा पाते तो वो भी हमारी हानि होती है, और जो हमारा पैसा बचा हुआ रखा है वो कहीं ना कहीं बीमारी को ठीक करने में लग जाता है और हमारे जो घर के अन्य काम है वो भी प्रभावित होते हैं। तभी कहा है कि आपकी अगर सेहत अच्छी होती है तो आपको लाभ ही लाभ है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बात पहुंचाते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, अपना टीकाकरण करवाएं। और आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में खासकर हम बात करेंगे टीकाकरण की, क्योंकि टीकाकरण के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि टीका क्यों लगवाएं, इससे बुखार आ जाता है, दर्द

0: होता है, और जब हम ठीक हैं तो टीका लगवाने की क्या आवश्यकता है, और भी बहुत तरह की बातें टीकाकरण के बारे में प्रचलन में है। तो इन्हीं सब भ्रम को तोड़ने के लिए और आप तक सही जानकारी पहुंचे कि टीकाकरण कितना जरूरी है हमें आने वाली गंभीर समस्याओं से, बीमारियों से बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्नों को बचाने के लिए, तो किस तरह से टीकाकरण काम करता है और हमें कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टीकाकरण से जुड़ी हुई हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, और इनसे जानकारी ले रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च या सीफार की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं, वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं, फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख, अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है, या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए, हमारी सोसाइटी जो है ना, वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया, भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया। पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया, ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम।
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए।
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है जी, तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे, और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए हमारे बच्चे, तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दोनों वर्किंग है, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है, कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूं कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
2: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और ANM की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
2: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिअश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है। लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे कार अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है? क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
2: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गाँव में लिया वो थे गाँव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की, कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है। लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा, और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
2: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर, जब माएं राशन लेने जाती है ना वहां पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहां एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन ने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहां दूसरों से जब बातचीत करती है जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहां पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
3: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद, सोच रहे हैं के बाद, एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रिएश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
3: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे, तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम, हम फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज, जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता है ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाए। तो 3 चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है, इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है हिचकिचाहट, जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है, जैसा आपने कहा, कि उनकी बात को सुनना। उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर, वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो, आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ, इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं, इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना, तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
3: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए, अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि टीकाकरण जो है ना, वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
2: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आएं, माता पिता अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
3: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के माध्यम से आपने जाना कि टीकाकरण हमारे जीवन को बचाने के लिए कितना जरूरी है। हमें अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, आशा दीदी हैं, ANM बहन जी हैं, उनकी बात माननी चाहिए, और अपने बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण गंभीर बीमारियों से हमको बचाता है। अगर हम टीकाकरण समय से नहीं करवाते तो हमें कहीं ना कहीं एक दिन पछताना पड़ता है कि काश हमने डॉक्टर साहब की बात मान ली होती, काश जो रेडियो पर कार्यक्रम आया उसमें जो बताई गई बातें हमने मान ली होती, तो शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। तो हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों का जरूर टीकाकरण करवाएं समय पर। फिलहाल समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी है।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
7: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य यही है कि आप खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानें, फिर उनका इस्तेमाल अपनी खेती में करें ताकि आपको अधिक लाभ मिले और खेती में आपकी लागत है वो कम हो। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग अब संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। किसान मित्रों, सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आपकी काफी मदद कर रही है, जिसके लिए कुसुम सोलर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर

कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी, और किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी से ये रागनी, किस्सा था जानी चोर का। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसानों के साथ ही अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजनाओं का ऐलान करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से पशु मित्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित युवाओं को पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के रोग कारण, उनके रोकथाम की जानकारी, टीकाकरण, ब्रीडिंग और आहार का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी पशु मित्र के रूप में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने जिले में आवश्यक सेवा प्रदान कर सकते हैं और पशु मित्र के रूप में कार्य कर अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। पशु मित्र योजना के माध्यम से पशुपालक किसानों को टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पशु मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं जो किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे हमारे पशुपालक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। पशु मित्र योजना के तहत बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को कार्य निष्पादन के अनुसार निर्धारित मानदेय का लाभ दिया जाएगा। तो जो भी हमारे ग्रामीण युवा पशु मित्र बनना चाहते हैं, वो अपने ज़िले में ज़िला पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से जान करके आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना पशु मित्र योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और सुनील चौहान। किस्सा रहेगा महाभारत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जल संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन, इसके जरिए हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान भाई कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसीलिए पानी बचाने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचय करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो आजकल जो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और खेती में

लागत कम कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण वालियान।

तरुण बालियान द्वारा गाए गए इस उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो शारदा 90.8 FM।
5: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नरगिस अपनी बेलूरी पर रोई है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज सत्यमान की सूरत को देख करके सावित्री के अरमान खिले हुए थे। सोचने लगी कि जो मेरी कोशिश थी, जिस तस्वीर की मुझे तलाश थी, आज वो मुझे मिल गई। मेहरबानों, सावित्री का मन, सावित्री की निगाह सत्यवान की शान शौकत से हटती नहीं।

छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी,

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नारी शक्ति का रूप है, नारी दुर्गा का रूप है, और यही एक वजह है कि भारतीय नारी का सम्मान किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नारी का सम्मान किया जाना चाहिए, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया। इसका मतलब अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं नारी आज भी अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही है, जूझ रही है, और यही एक वजह है कि उसको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। महिला हिंसा के रूप में अगर हम देखें, शारीरिक हिंसा, यौनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इस हिंसा से पीड़ित है, परेशान है। और हम यही कहना चाहते हैं, हमारा रेडियो यही कहता है, स्मार्ट के सौजन्य से मिलकर ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक जागरूक वाला कार्यक्रम कि महिलाओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सोचिए, कल्पना करिए कि अगर महिला ना होती तो शायद आप और हम ना होते। महिला होती है वो दो घरों को संभाल कर चलती है, एक बाबुल का और एक पिया का। यही एक वजह है कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, संस्कारों की बातें होती हैं। आइए कुछ अच्छी अच्छी बातों के जरिए सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं।

आजकल अभिभावक के साथ रहने वाली लड़कियां, एक सर्वे हमें बता रहा है, उसके आधार पर ये बात मैं आपके साथ साझा कर पा रहा हूँ। जिन परिवारों की मुखिया औरतें हैं, जिनके पिता या पति लापता हैं या मर चुके हैं, शराबी पतियों की पत्नियां भी ज्यादा हिंसा का शिकार होती हैं, बेसहारा महिलाएं, बुजुर्ग और रोगी महिलाएं, विकलांग महिलाएं या विकलांग बच्चों की माताएं, पिछड़े अथवा अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं, यौन कर्मी, वे महिलाएं जो यौनिक व्यवहार के मामले में अल्पसंख्यक हैं, जैसे वे महिलाएं जो किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध रखती हों, तथा साथ ही वे महिलाएं जो महिला और पुरुष दोनों के साथ यौन संबंध रखती हों। अगला बिंदु है वो महिलाएं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे आश्रय घरों में रह रही हों, आपदा के बाद और संघर्षमय हालातों से घिरी महिलाएं, जैसे आपदाग्रस्त हालातों, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी इत्यादि, और संघर्षमय स्थितियों जैसे कि दंगे, पारिवारिक झगड़े और युद्ध, आतंकवादी हमले या सरकार के खिलाफ विद्रोह में छोटी लड़कियां या महिलाएं यौन शोषण के खतरों से घिरी होती हैं। इन हालातों में अगर वो अपने अभिभावक, माता पिता या अन्य किसी दूसरे पारिवारिक सदस्यों को खो देती हैं, तो ये असुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। इन बातों को यहाँ डिस्कस करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित व्यवहार न हो, अगर कहीं हो रहा है तो उसका हम विरोध करें। यही वजह कि इस कार्यक्रम के जरिए वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 01204060205 पर आप मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट के सौजन्य से एक खास कार्यक्रम महिलाओं पर आधारित विशेष श्रृंखला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को अपने कानून के बारे में जानना, अपने अधिकारों के बारे में जानना, अपने प्रति हो रही हिंसा के बारे में जानना, उसको किस तरीके से रोका जाए उसके बारे में जानना समझना हमारे लिए वाकई बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि यही चीजें अगर हमारे घर में हो रही हैं, तो शायद अगर कहीं हम अनजान हैं, तो हम जाने समझे, हम जाने समझे कि क्या मेरी बहन बेटी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। चलिए, हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इस विषय में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ बिंदुओं के बारे में बात की कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जब हमें जानना समझना जरूरी है कि ये सारी बातें एक हिंसा के अंतर्गत आ रही हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन लक्षणों और संकेतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं पर आधारित। सो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा शारीरिक या मानसिक प्रभाव के रूप में दिखाई दे सकती है, या ये महिला के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। हो सकता है कि इन प्रभावों के बारे में बात करते हुए महिलाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में ठीक से न बता पाएं, और ऐसा अक्सर होता भी है। कहीं ना कहीं वो असहज महसूस करती हैं, डर होता है कि कहीं ये मेरी बात जग जाहिर ना हो जाए और जिससे अपनी बात में साझा कर रही हूं वही वक्त आने पर मुझे उस बात से चिढ़ाए या मुझे परेशान करे। ऐसा होता भी है। घर घर जाने के दौरान आप अपना ध्यान दे सकती हैं कि जो महिलाएं हैं उन लक्षणों के बारे में शिकायत कर सकती हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, खासतौर से यौन हिंसा के मामले में। लेकिन हो सकता है कि वे यौन हिंसा के सच के बारे में बात न करें। और अक्सर आपने हमने देखा होगा कि अक्सर चोट लगने और उसके इलाज के बीच काफी देरी हो जाती है। आपको इस सच के बारे में संवेदनशील होना चाहिए कि जो लक्षण है उनके संकेतों हमें समझना होगा, और पीड़ित महिलाएं वास्तव में दुर्व्यवहार से पीड़ित भी हो सकती हैं, इस बात को हमें जानना होगा। उनके इतिहास के बारे में जानकारी लेते समय संवेदनशीलता हमें बरतनी होगी। बात करते हैं कि शरीर पर नील, खासतौर से आंखों और चेहरे पर, कानों पर चोट के निशान जिसके कारण सुनने में परेशानी होने की शिकायत हो सकती है, दांत ढीले होना या टूटना, बिना किसी स्पष्ट जानकारी वजह के लंबे समय से की जाने वाली शिकायतें, इसमें दर्द की बेवजह शिकायतें सुन्न पड़ जाने या निचले पेट में दर्द की शिकायतें शामिल हैं, गर्भवती महिलाओं का अकारण गर्भपात, आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या के ख्याल आना, चिंता, डर, निराशा, खुद को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार, नींद की समस्याएं, ऐसी शिकायतें जिनसे आपको शक हो कि यौन हिंसा हो रही है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। कुछ और बातें मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। तो हमेशा हमें सतर्क यानी कि अलर्ट रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। कहते ना कि कान खोल कर रखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि आप ये विशेष कार्यक्रम सुन रही हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये होना अगर हो रहा है हमारे साथ तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन बातों के खिलाफ हमें आवाज उठानी ही होगी। सो पेट के निचले हिस्से में लंबे समय से दर्द की शिकायतें, मूत्र मार्ग संक्रमण के संकेत और लक्षण जैसे पेशाब करने में अक्सर परेशानी, दर्द या जलन होना, ठंडे से बुखार होना और बार बार और गाढ़े रंग का पेशाब आना, यौन संक्रमण के लक्षण जैसे योनि में खुजली, असामान्य स्राव, खुजली, लाल चकत्ते होना, जननांग क्षेत्र के निचले हिस्से या मुहाने पर कटाव या सूजन होना, छोटे बच्चों या युवा लड़कियों में यौन संक्रमण, अविवाहित या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का गर्भधारण। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना वाकई बहुत जरूरी है। सुनना समझना चाहिए कि हमारे साथ कहीं कोई अनुचित व्यवहार दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम इसका विरोध करें, अपने परिजन को बताएं, और वक्त रहते हुए पुलिस को भी अगर आप सूचित करेंगे तो यकीन मानिए कि किसी हद तक या यूं कहें कि बहुत हद तक आप इस तरीके से अपने साथ होने वाले व्यवहार को
रोक सकती है। महिलाओं पर होने वाली हिंसा के दुष्परिणाम, वाकई एक अच्छा विषय है। इसके बारे में जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। ये विशेष कार्यक्रम सुनो शारदा 90.8 FM साथ ही साथ स्मार्ट के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें 0120-4060-205 पर कॉल कर बताइएगा जरूर। अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करते रहें और सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। ये सच बात है कि महिलाओं के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, या उनकी बातों को अपने जीवन में हमने गढ़ा है। माँ को हमने नजदीकी से देखा है घर में सेवा करते हुए, माँ को हमने नजदीकी से देखा है खुश रहते हुए, माँ को हमने नजदीकी से देखा है दुखों को झेलते हुए, या हमने कभी कभी ऐसा भी दुख झेला है, देखा है कि जो किसी के साथ ना हो, क्योंकि अम्मा को अक्सर हमने कभी कभी पिटते हुए भी देखा है। अम्मा को अक्सर हमने घर वालों के जरिए भला बुरा कहते हुए सुना है। ये हो सकता है कि ये कहानी या ये बात मेरे घर में हो, आपके घर में हो। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इस संबंध में स्मार्ट के सौजन्य से ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कुछ बातें हमारे घर में हो रही हैं, तो समझ जाइए कि ये हिंसा का ही एक परिणाम है। बात करते हैं कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा के दुष्परिणाम। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है, जानने समझने की वाकई बहुत आवश्यकता है। डरे नहीं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। शारीरिक हिंसा के बारे में बात करते हैं। सो छोटी मोटी चोट से लेकर नील पड़ने तक की चोट, जलना, गंभीर या पुराना दर्द और छोटी लड़कियों में कुपोषण, गंभीर हिंसा के कारण हड्डी टूटने, विकलांगता और कई बार मृत्यु, जानलेवा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक या मानसिक। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव शारीरिक प्रभावों से कहीं ज्यादा गंभीर और हानिकारक होते हैं। वो महिला के आत्मविश्वास को झकझोर देते हैं, इससे कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी वजह से एक कारण है कि महिलाएं वास्तव में आत्महत्या कर सकती हैं या आत्महत्या की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से उनमें निराशा, चिंता और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। किशोरी बालिकाओं और वयस्क महिलाओं का यौन स्वास्थ्य भी यौनिक जबरदस्ती के कारण प्रभावित हो सकता है। मारपीट की परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लक्षण, ये लक्षण ऐसी महिलाओं में देखे जा सकते हैं जो लंबे समय से प्रताड़ना या मारपीट को झेल रही हैं। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ये घटना या तो मेरे घर की कहानी है या किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी है या किसी दूसरी महिला की ये कहानी है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम सही कर रहे हैं? ये गलत है। कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी यानी कि मैं महिला की बात कर रहा हूँ, उस घर में सुख शांति का वास होता है, तरक्की वहां होती है, बरकत वहां होती है। जहां ग्रह क्लेश होती है, महिलाओं का अपमान होता है, तो वहां कभी बरकत हो नहीं सकती। बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। अवांछित गर्भावस्था और यूं कहें कि यौन संक्रामक बीमारियां सामान्य लक्षण है। अन्य लक्षण है जननांग क्षेत्र में चोट लगना, गर्भावस्था के दौरान गर्भपात, समय से पहले प्रसव और यहाँ तक कि मातृ मृत्यु जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देने वाले आघात। बच्चों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम, ये अहम टॉपिक है, खास बिंदु है। जब हम अक्सर ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं अपने घरों में देखते हैं, तो बच्चों पर भी कहीं ना कहीं वही असर पड़ रहा होता है। अपनी माँ को उत्पीड़न का शिकार होते देखने वाले बच्चे या तो गुस्सैल या आक्रामक बन जाते हैं, या फिर वे खामोश हो जाते हैं और अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। उत्पीड़क परिवारों में रहने वाले बच्चे अक्सर ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता और वो अन्य बच्चों के मुकाबले धीमी गति से सीखते हैं। वो मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर वो अकारण स्कूल से अनुपस्थित रहने लगते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं और इससे स्कूल में उनके कार्य प्रदर्शन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे अक्सर घर से भाग जाते हैं, अपनी ओर ध्यान खींचने वाले व्यवहार करते हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ जाती है। अक्सर जब कोई महिला घर में उत्पीड़न का शिकार होती है तो उसके बच्चों में भी ये भावना घर करने लगती है कि लड़कियों और औरतों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और उनके साथ होने वाली हिंसा ठीक या स्वीकार है, और आगे चलकर बच्चे भी कहीं ऐसा ना करें, ये डर भी हमें सताया रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि किसी भी घर में इस तरीके से घटनाएं, दुर्घटनाएं, दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ ना हो। हमारा फर्ज बनता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उनको इज्जत दें। जब वो खुश होंगी तो जाहिर सी बात है कि हम सब खुश होंगे ना। आप नहीं चाहते कि आपकी बहन को किसी पराए घर में दुख मिले, आप नहीं चाहते कि आपकी माँ को दुख मिले।
तो हम किसी की बहन बेटी को कैसे दुख दे सकते हैं, अपने बच्चों की माँ को हम कैसे दुख दे सकते हैं। सो प्लीज समझदारी दिखाएं, महिलाओं का सम्मान करें, अपना ख्याल रखें और बस जिंदगी को हंसते गाते मुस्कुराते गुजारते चले जाएं। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती हैं तो अच्छी बात है, और जब आप ये कोशिश प्रयास करेंगी तो ये सच है कि समाज आपके साथ चल पड़ेगा और सामाजिक तौर पर एक आप उदाहरण कहीं ना कहीं पेश कर रही होंगी, और इसी तरीके से आप किसी ना किसी प्रेरणा के स्रोत भी होंगी। सो प्लीज, हमारा फर्ज बनता है कि महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें। कुछ बातें महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको जागरूक कर सकते हैं, इसी विषय पर ध्यान रखते हुए हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की क्या भूमिका है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर हस्तक्षेप करने में दो प्रकार की भूमिका हो सकती है, जैसे कि हिंसा को रोकना यानी कि जागरूकता पैदा करना, और समुदाय को किसी भी प्रकार की हिंसा यानी कि महिला हिंसा के खिलाफ एकजुट करना। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना, हिंसा की रोकथाम यानी कि सामुदायिक स्तर पर आशा की भूमिका। इसी संबंध में हम बात करते हैं एकजुटता लाना, यानी कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा समाज में गहराई से फैली सांस्कृतिक असमानता के कारण है। इस पर आवाज उठाने के लिए समुदाय में लगातार जागरूकता और एकजुटता लाने के प्रयास किए जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। आपके लिए अकेले इस मुद्दे पर काम करना मुश्किल होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ आशा वर्कर की, इसलिए आपको ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों यानी कि VHSNC, ग्राम पंचायत और महिलाओं के साथ काम करने वाले ग्राम स्तरीय सामाजिक सहायता समूह जैसे कि महिला मंडल, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वास्थ्य संघ या महिला पंचायतों जैसे अन्य सामुदायिक समूहों के साथ सहभागिता बनानी होगी। आप अपने PHC कार्य क्षेत्र को अंतर्गत काम करने वाली आशाओं का एक समूह बना सकती हैं और हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए समर्थन जुटा सकती हैं। इसके लिए आप मासिक PHC बैठक को मंच का प्रयोग भी कर सकती हैं। इन बैठकों में आप हिंसा के मुद्दों पर चर्चा कर समूह के साथ सहभागिता बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। कई बार हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। उस स्थिति में आपको उन समूहों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए, उनके बराबर संपर्क में रहना चाहिए जो हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को अनौपचारिक सहायता और आश्रय प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। ये समूह हिंसा को बढ़ावा देने वाली मूलभूत समस्याओं के बारे में व्यापक मंच पर चर्चा चला सकते हैं और हिंसा से जुड़ी दूसरी समस्याओं को ग्राम स्तर पर सुलझाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण हितभागियों जैसे कि इस विषय से जुड़े सभी पक्षों यानी कि महिला हिंसा के मुद्दे पर परिचर्चाएं सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे पंचायत के प्रतिनिधि, महिला समूह, स्थानीय सामुदायिक नेता, लड़कियों के माता पिता, अभिभावक इत्यादि आदि से बातचीत करना जरूरी है, आवश्यक है। ग्राम स्तर पर महिलाओं की सहभागिता और आवाज को सामने लाने वाले समूहों के साथ एकजुटता मजबूत करने से महिला हिंसा की समस्याओं को ज्यादा बुलंद आवाज में पेश किया जा सकेगा। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पारिवारिक झगड़ों की स्थितियों और धार्मिक या जातिगत संघर्षों में भी होती रहती है। महिलाओं को सामान्य तौर पर संपत्ति या जागीर के रूप में देखा जाता है और अक्सर ऐसा होता भी है, अक्सर सबसे पहले उन्हें ही हमलों का शिकार बनाया जाता है, और इन मामलों में आपको खुद ही अपनी अंदरूनी बाधाओं से ऊपर उठना चाहिए जो आपको किसी खास समूह से जुड़े होने के कारण सीमाओं में बांधती है। ये सब करते समय आपको बहुत कुछ प्रयास करने होंगे।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। बिंदु है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की भूमिका क्या है, इस पर हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले, एकजुटता लाना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, समुदाय को शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता निर्माण और लोगों को एकजुट करना आपकी गतिविधियों का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। आपको इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अपने गांव की किशोरियों, युवतियों और महिलाओं के साथ बैठक करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी समितियां हैं एकजुटता लाने का काम करती हैं। आशा वर्कर हो गई, गांव के प्रधान हो गए, महिला इकट्ठे होकर अपनी बात रख सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं कि मान्यताओं को बदलना, जैसे कि मारपीट प्यार की अभिव्यक्ति का एक ही रूप है, वो मुझे मारता है तो क्या हुआ। कोई भी औरत अपने साथी के बिना नहीं रह सकती, चाहे वो उसके साथ दुर्व्यवहार ही क्यों ना करता हो। बलात्कार की शिकार महिला की ही गलती होती है। यह लड़की की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न होने की संभावना नहीं रहती, इत्यादि। तो ये मान्यता है कुछ ऐसी, इनको बदलने की आवश्यकता है। किशोरियों साथ ही साथ महिलाओं को मासिक बैठकों में हिंसा से जुड़े मुद्दों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें अपने अनुभव बांटने के लिए प्रेरित करना, ताकि उनके बारे में कोई कदम उठाया जा सके। अगला बिंदु है घरेलू हिंसा यानी यौन उत्पीड़न आदि रोकने के लिए बनाए गए जो कानूनी प्रावधान है उन अधिनियम

नियमों के बारे में जागरूकता फैलाना। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, वन स्टॉप सेंटर भी होते हैं तो वहाँ जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, है ना। दहेज संबंधी उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक जाति सम्मान के नाम पर की गई हत्या, लड़कियों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव, साथ ही साथ विवाह के पंजीकरण और लड़कियों को उत्तराधिकार के हक दिलाना, इस तरीके से या यूं कहें कि आदि से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होने और अभियानों को आयोजित करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के माध्यम से प्रयास करना, लड़कियों और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समुदाय में जानकारी फैलाना। इनमें से कुछ हैं जैसे कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली योजनाएं, सबला योजना, महिला समाख्या, एकल महिलाओं जैसी विधवाओं, अविवाहित तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन योजना, आपके राज्य में चलाई जाने वाली कोई विशिष्ट योजनाओं के बारे में आपके प्रशिक्षक यानी संवादक जानकारी प्रदान करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो बातें हैं, कहाँ कोई बैठक हो रही है, कहाँ कौन अधिकारी आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आशा वर्कर्स की, और महिलाओं को आप वो इकट्ठा करें, उनको भी बताएं कि आज ये मीटिंग होने वाली, इन मुद्दों पर मीटिंग होने वाली है, ताकि वो भी तैयार होकर वहां आए। बात करते हैं कि हिंसा के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना। इसके अंतर्गत बिंदु आता है कि मुद्दे के बारे में सचेत रहना। आप स्वयं सचेत रहते हुए किसी महिला के बारे में पता लगा सकती हैं जो हिंसाग्रस्त है या हिंसा के खतरों से घिरी है, और ऐसे उपायों की खोज कर सकती हैं जो ऐसी महिलाओं की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा पति जिसके व्यवहार में हमेशा नियंत्रण की बू आती हो, अथवा जब आप महिला के साथ बात कर रही हो तो वो उसे अकेला न छोड़ना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर आप संभावित हिंसा के बारे में सचेत हो सकती हैं। ऐसी चोटों के बारे में सचेत रहें जिनके बारे में बताए जाने वाले कारणों से आपको वो सच ना लगे। अगर आपको कोई ऐसी महिला मिलती है जिसके साथ हिंसा होने का खतरा है या हिंसा हुई है, भले ही उसने इस बारे में कोई रिपोर्ट ना की हो, तो आपका उसके साथ हुई या होने वाली हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा फर्ज है आशा वर्कर का। और अगर आप इस जानकारी को सुन रहे हैं या सुन रही हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अगर व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये तो मेरे साथ हो रहा है, तो आप तुरंत आवाज उठाएं और इसका जो विरोध है वो आपको करना चाहिए। और इस संपर्क में आप अपने पुलिस अधिकारी से मिल सकती हैं, आशा वर्कर से मिल सकती हैं, महिला समिति में आप जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तो गंभीर प्रकार की हिंसा के मामले जानलेवा भी हो सकते हैं, वहां महिला को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। कम गंभीर हिंसा, जो वैसे तो कम हानिकारक होते हैं, और गंभीर हिंसा के फर्क को समझना चाहिए। अगर आपके सामने कोई गंभीर हिंसा का मामला आ जाता है तो आप क्या करेंगे? महिला को तत्काल किसी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करें। जब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हिंसा हो रही हो या ऐसी स्थिति हो जहां हिंसा के कारण महिला के जीवन को खतरा हो, तो तुरंत कार्रवाई करें। आपको तुरंत किसी पारिवारिक सदस्य या सामुदायिक सदस्य, यूं कहें कि जिस पर आप विश्वास कर सकें, उसको ढूंढना चाहिए जो महिला को हिंसात्मक स्थिति से बचा सके। अगर जरूरत हो तो आप पुलिस संरक्षण भी ले सकती हैं। आप उस महिला के लिए उस क्षेत्र में चलाए जा रहे किसी आश्रय घर से, या यूं कहें कि घर में आश्रय ढूंढ सकती हैं, या किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था से संपर्क कर सकती हैं जो विपत्ति में फंसी महिलाओं को सहयोग और सेवाएं देने का काम करते हो। बात आती है सवाल पूछें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि सवाल हमेशा अकेले में और बिना किसी दोषारोपण के पूछे जाने चाहिए। हिंसा के बारे में सीधे सवाल करने से शायद आपको कोई जवाब न मिले। महिला का विश्वास जीतें और उसे ये विश्वास दिलाएं कि उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को गुप्त रखा जाएगा। याद रखें कि पारिवारिक सदस्यों या पति या साथी के समक्ष महिला से कुछ भी पूछना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना ये भी एक बिंदु है। आपको ये आकलन करना चाहिए कि क्या महिला शारीरिक चोट या मानसिक आघात से पीड़ित है। मामूली चोटों के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करें, लेकिन यदि आपको कोई गंभीर प्रभाव दिखाई देते हैं तो उसे समुचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए सही जगह भेजें। यदि आवश्यक हो तो साथ लेकर जाएं या फॉलोअप कार्रवाई सुनिश्चित करें। बात करते हैं भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। आशा के रूप में आप उनकी सबसे भरोसेमंद साथी बन सकती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं आशा वर्कर की भूमिका क्या होती है। महिला की खामोशी को तोड़ने और खुद पर हुई हिंसा के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में आप मदद कर सकते हैं। उनसे बात करें और शर्म, डर, गुस्से और निराशा की भावनाओं से उबरने में उनकी मदद करें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि उनके साथ हुई उत्पीड़न में उनकी कोई गलती नहीं है। आखिर में पॉइंट है, बिंदु है कि महिला की सुरक्षा के उपाय करें।
महिला को बताएं कि कैसे उन्हें हिंसा होने की संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वयं वो अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। सो आज हमने बात की महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे कुछ और खास बिंदुओं के साथ, हम आपसे पुनः जोड़ेंगे। तो इस बात को जानिए, इसका मर्म समझिए कि क्या गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, क्या सही होना चाहिए। फिर मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। महिला है तो हम है, महिला है तो घर है ना। और कहा जाता है कि वो घर की लक्ष्मी होती है। जहां आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो उस दिन से बरकत आपके घर की घटने लगेगी। अपना ख्याल रखें, सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
4: पृष्ठ संख्या 34, परियोजना 2, जैव विविधता विवरणिका। ये परियोजना आपको आसपास के परिवेश में सजीव वस्तुओं के बीच जैव विविधता के बारे में जानने में सहायता करेगी। चित्र 2.1। आप अपने अवलोकनों और एकत्र की गई जानकारी के आधार पर एक जैव विविधता विवरणिका बनाएंगे। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप कार्य करने में सक्षम होंगे। जैव विविधता विवरणिका के बारे में जानने में, जैव विविधता को अंकित करने के लिए स्थानों की पहचान करने में, जैव विविधता पर एक प्रस्तुतीकरण तैयार करने में, उन स्थानों की पहचान करने में जहां जैव विविधता को अंकित किया जा सके, जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने में। चित्र 2.1। अपने आसपास सजीव वस्तुओं की विविधता को समझिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें छात्र छात्राएं अपने आसपास सजीव वस्तुओं की विविधता को समझ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 35, जैव विविधता जो सजीव वस्तुओं की विविधता को दर्शाती है। इसमें पृथ्वी पर जीव के रूप समाहित हैं। इसमें पौधे, जानवर, पक्षी, मछली, कीड़े और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित हैं जो मिट्टी सहित हर जगह पाए जाते हैं। चित्र 2.1।

करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्माण या कृषि के लिए भूमि की सफाई या जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण जीवों के आवासों में परिवर्तन होता है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। इस परस्पर जुड़ाव या निर्भरता से तात्पर्य है कि किसी भी पौधे या प्रजाति की हानि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, जिसमें मानव भी सम्मिलित है। जैव विविधता विवरणिका लोगों को उपयोगी जानकारी भी प्रदान करती है, जैसे फसलों और जानवरों से संबंधित स्थानीय ज्ञान, औषधीय गुण वाले पौधे, पौधों को प्रभावित करने वाले कीड़े, फसल बोने का सही समय इत्यादि। आप अपने आसपास की जैव विविधता को व्यवस्थित ढंग से सूचीबद्ध कर अपनी लघु जैव विविधता विवरणिका बना सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा पौधा, कीट, पक्षी या जानवर मिलता है जिसे आप नहीं पहचानते, तो आप निम्नलिखित से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक, शिक्षकों या बुजुर्गों या परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से बात करके। दो, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़कर। तीन, कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से। चार, मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन का उपयोग करके। जैव विविधता विवरणिका में प्रयुक्त शब्द, वैज्ञानिक नाम। सजीव वस्तुओं को दिया गया एक नाम जो सभी भाषाओं में समान होता है। विभिन्न भाषाओं में इनके नाम अलग अलग होते हैं। एक वैज्ञानिक नाम ये सुनिश्चित करता है कि लोग, विशेषकर वैज्ञानिक, जानते हैं कि वे एक ही सजीव वस्तु का उल्लेख कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 36, विविधता। इससे तात्पर्य एक ही प्रकार के पौधों में भिन्नता से है। उदाहरण के तौर पर आम की विभिन्न किस्में हैं, जैसे अल्फांसो, केसर, रत्नागिरी, तोतापरी, चौंसा, दशहरी, लंगड़ा, बंगनपल्ली, अनवर रतोल और पैरी। फसल का मौसम। प्रत्येक फसल के लिए विशेष मौसम होता है जिसमें वो फसल उगाई जाती है। फल आने का मौसम। ये उस मौसम को संदर्भित करता है जब पेड़ पर फल लगने लगते हैं। बीज या पौधों का स्रोत। इसका तात्पर्य ये है कि नए पौधे कहाँ से लाए जाते हैं, जैसे बीज, अंकुर, कंद, तनों के भाग से या किसी अन्य विधि से। प्रभावित फसल। जो फसल कीटों, रोगों, पत्तियों या फलों को खाने वाले कीटों या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुई हों। परपोषी। ये ऐसे पौधे या जानवर होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधों या जानवरों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते, पिस्सू, कीड़ों का घर होते हैं जो उनका खून चूसते हैं, और कुछ पौधे कैटरपिलर को आश्रय प्रदान करते हैं जो उनकी पत्तियों और फलों को खाकर बढ़ते हैं। कीट। ये वे कीट, पक्षी या जानवर हैं जो पौधों के लिए हानिकारक हैं। कीटनाशक। कीटनाशकों का उपयोग कीटों द्वारा परपोषी को होने वाली हानि को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये तरल, ठोस या गैस के रूप में हो सकते हैं। खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशकों का उपयोग खरपतवारों द्वारा पौधों को होने वाली हानि को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। GI टैग। भौगोलिक संकेत GI टैग सरकार द्वारा दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। पौधों के विषय में इसका अर्थ है कि पौधे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हैं और उस क्षेत्र की सभी उपज उच्च मानक स्तर की होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में चावल की कई किस्में हैं, जैसे केरल का नवारा चावल, उत्तराखंड का बासमती और पश्चिम बंगाल का गोविंद भोग चावल GI टैग वाले हैं। अन्य उदाहरण महाराष्ट्र के जलगांव के केले का है। मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। एक, अपने आसपास देखी गई जैव विविधता का व्यवस्थित रूप विवरण तैयार कर सकेंगे। दो,
जैव विविधता से संबंधित

0: संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकेंगे। 3. अपने आसपास की जैव विविधता के बारे में अपनी समझ को प्रस्तुत करने के लिए जानकारी का विश्लेषण कर सकेंगे। पृष्ठ संख्या 37। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 1. नोटबुक, कलम, पेंसिल, शार्पनर, रबर और मापने का पैमाना जैसे कि मीटर स्केल। पौधों या कीटों का विस्तृत विवरण देखने के लिए हाथ से प्रयोग होने वाले आवर्धक कांच या लेंस का उपयोग कर सकते हैं। कैमरा या स्मार्टफोन जो अपने शिक्षक या माता पिता अभिभावकों से लिया गया हो का उपयोग फोटोग्राफ लेने या वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि आपको अपनी जैव विविधता विवरणिका में जो कुछ भी सम्मिलित करना है उसका रेखा चित्र अवश्य बनाना चाहिए। सजीव वस्तुओं की पहचान के लिए आप एक स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? आपको निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के लिए जूते पहनिए। मच्छरों के काटने से बचने के लिए अपने हाथ और पैर ढक कर रखिए। जंगली पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों को देखते समय सावधान रहिए। किसी भी जानवर, पक्षी या कीड़ों को परेशान मत कीजिए। किसी भी पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। कोई भी कूड़ा कचरा पीछे न छोड़िए। ये सजीव वस्तुओं के लिए हानिकारक है। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक की सहायता अवश्य लीजिए। सावधान रहिए और सुरक्षा की जांच किए बिना कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न कीजिए। इसके साथ सबसे अनिवार्य है कि व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न कीजिए। पृष्ठ संख्या 38। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? गतिविधि 1। हमारे आसपास क्या है? अपने आसपास देखिए और उन सजीव वस्तुओं का निरीक्षण कीजिए जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि प्रत्येक कीटों, मकड़ियों, गिलहरियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों से भरा एक छोटा सा जीव जगत है जो पौधों को अपना भोजन बनाते हैं और इनकी पत्तियों और शाखाओं के बीच आश्रय लेते हैं। चित्र 2.2। आप इस तरह के अपने कुछ अवलोकनों और संबंधित सूचनाओं को अपने जैव विविधता विवरणिका में लिखिए। चित्र 2.2। हमारे आसपास सजीव वस्तुओं के अवलोकनों को लिखना। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं अपने आसपास की सजीव वस्तुओं के अवलोकनों को लिख रहे हैं। जैव विविधता विवरणिका पर लिखना शुरू करने से पहले तालिका 2.1 को पूरा कीजिए। इससे आपको उन जीवित जीवों को याद रखने में सहायता मिलेगी जिन्हें आप सामान्यतः देखते हैं। आप उन्हें कहाँ देखते हैं? उदाहरण के लिए किसी जलाशय के पास, किसी खेत में या किसी पार्क में। आप चाहें तो एक स्केच बना सकते हैं या एक चित्र चिपका भी सकते हैं। ये जानकारी तब उपयोगी होगी जब आप अपने जैव विविधता विवरणिका को अंकित करने के लिए सर्वेक्षण की योजना बनाएंगे। तालिका 2.1। उन स्थानों की पहचान करना जहां आप विभिन्न प्रकार की सजीव वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में है सजीव वस्तुएं या जीवित प्राणी, कीटों, पक्षियों, जानवरों, कृमि। दूसरे कॉलम में है नाम। जितना संभव हो उतनी भाषाओं में नाम खोजने का प्रयास कीजिए। तीसरे कॉलम में है स्थान। आप उन्हें कहाँ पाते हैं? पृष्ठ संख्या 39। गतिविधि 2। किसी विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। आप अलग अलग विशेषज्ञों को जैव विविधता के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जैसे वन अधिकारी या किसान। एक संरक्षणवादी जो पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करता है को भी जैव विविधता के विषय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। एक और व्यक्ति जिसे आप आमंत्रित कर सकते हैं वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा का विशेषज्ञ, जैसे एक वैद्य या आयुर्वेदाचार्य। ये व्यक्ति पारंपरिक आदिवासी चिकित्सा में पारंगत होता है, क्योंकि वे औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य संबंधित पौधों का उपयोग करते हैं। आपको विशेषज्ञों से पूछने के लिए प्रश्न पहले से ही तैयार करने चाहिए। वैद्य या आयुर्वेदाचार्य से प्रश्न पूछने के कुछ उदाहरण हैं। एक, हमें अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे कहाँ मिल सकते हैं? दो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस क्षेत्र में उगने वाले पौधे लंबे समय से वही हैं, स्थानीय, या उन्हें अन्य स्थानों से लाया गया है? तीन, क्या ऐसे कोई पौधे हैं जो अब इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? चार, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमें किस प्रकार के पौधे अधिक उगाने चाहिए? पांच, क्या कोई ऐसा पौधा है जिसे हमें नहीं उगाना चाहिए क्योंकि ये जैव विविधता को हानि पहुंचाता है? छह, हम अपनी जैव विविधता विवरणिका तैयार करना शुरू कर रहे हैं, इस संदर्भ में क्या आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है? मुझे क्या करना है? अब आप अपनी जैव विविधता विवरणिका बनाने के लिए तैयार हैं। आपको प्रारंभिक चरण में उन स्थानों की पहचान करनी है जहां आपको जाना है। आपको उन स्थानों पर एक से अधिक बार जाना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी यात्राओं के लिए एक योजना भी बनानी होगी। इस योजना के आधार पर आपको जैव विविधता विवरणिका में आंकड़ों या तथ्यों को अंकित करना होगा। इसके पश्चात अपने अवलोकनों के आधार पर एक प्रस्तुति बनानी होगी। गतिविधि तीन, सर्वेक्षण के लिए स्थानों की पहचान कीजिए। आप ये तय करें कि जैव विविधता का विवरण तैयार करने के लिए किन स्थानों पर जाएंगे। उदाहरण के लिए, विद्यालय के आसपास का क्षेत्र, जल निकायों के आसपास, अपने घर के पास, खेतों या पार्कों या बगीचों या नर्सरी के आसपास, किसी धार्मिक स्थान के पास और बाजार के निकट। चित्र 2.3, पृष्ठ संख्या 40। इस पृष्ठ पर चार चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में तालाब है, दूसरे चित्र में वन है, तीसरे चित्र में खेत है, चौथे चित्र में उद्यान है। चित्र 2.3 का तालाब, चित्र 2.3 ख वन, चित्र 2.3 ग खेत, चित्र 2.3 घ उद्यान। चित्र 2.3 जैव विविधता के अवलोकन के स्थान, तालाब, वन, खेत, उद्यान। चित्र में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त। यदि आप अपने अवलोकनों या आपके द्वारा एकत्र की गई जानकारी की जांच करना चाहते हैं तो आपको शीघ्रता से उन क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए ताकि आप समय से वापस आ सकें। इस पृष्ठ पर प्रश्न आपको अपने सर्वेक्षण को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता करेंगे। एक, आपके आसपास किस प्रकार के आवास मौजूद हैं, जैसे वन, आर्द्र भूमि, घास के मैदान, शहरी क्षेत्र, खाली स्थान। दो, क्या आपने कोई ऐसा क्षेत्र देखा है जहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पौधे उगते हैं, हाँ या नहीं, खाली स्थान। तीन, आपने अपने आसपास किस प्रकार के जीव, पक्षी, स्तनधारी, कीड़े आदि देखे हैं, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 41। चार, क्या कुछ क्षेत्रों में पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? उदाहरण के लिए, कुछ प्रजातियों का संरक्षण या क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, खाली स्थान। पांच, अब आप किन स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं? इस पृष्ठ पर लिखिए। एक, खाली स्थान। दो, खाली स्थान। तीन, खाली स्थान। चार, खाली स्थान। पांच, खाली स्थान। गतिविधि चार, जैव विविधता अवलोकन के लिए भ्रमण का समय निर्धारित करना। बिंदु एक, स्थानीय विशेषज्ञों, जीव विज्ञानियों, संरक्षणवादियों और अन्य लोगों से इस विषय में सलाह लीजिए।
1: बिंदु दो,
0: अपने आप को समूहों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक समूह में अधिकतम 5 विद्यार्थी हों।
1: बिंदु तीन,
0: शैक्षणिक वर्ष के अलग अलग समय पर पहचाने गए क्षेत्रों का भ्रमण करने की योजना बनाइए, ताकि आप देख सकें कि विभिन्न मौसम परिदृश्यों के दौरान कोई परिवर्तन होता है या नहीं। भ्रमण पर जाने के लिए एक समय सारणी बनाइए और इसे नीचे दी गई तालिका 2.2 में अंकित कीजिए। तालिका 2.2, जैव विविधता विवरणिका के लिए भ्रमण पर जाने की समय सारणी। एक, खाली स्थान। दो, खाली स्थान। तीन, खाली स्थान। चार, खाली स्थान। पांच, खाली स्थान। छह, खाली स्थान।
1: बिंदु
0: एक, आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों जैसे दूरबीन, आवर्धक कांच, कैमरे, क्षेत्र पथ प्रदर्शक, फील्ड गाइड, नोटबुक आदि भी साथ ले जाइए। पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य सजीव वस्तुओं का अवलोकन कीजिए।
1: बिंदु
0: दो, पहचाने गए स्थानों पर जाएं और उनका अन्वेषण कीजिए। पृष्ठ संख्या 42। गतिविधि 5, जैव विविधता विवरणिका को भरना। जिन स्थानों पर आप गए हैं उसके आधार पर अपने अवलोकनों और चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं तालिका 2.3 से 2.7 में अंकित कीजिए। जैव विविधता विवरणिका में कई पंक्तियां और स्तंभ कॉलम होते हैं। तालिका 2.3 से 2.7 का अध्ययन कीजिए। यथासंभव अधिक से अधिक अंकित करने का प्रयास कीजिए। आप अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा में अन्य प्रकार की जानकारी से संबंधित अधिक पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। आप अपने आसपास रहने वाली सजीव वस्तुओं से संबंधित नई तालिकाएं भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो कॉलोनी के बगीचे में फूलों और फलों के पेड़ों की खोज कीजिए। चित्र 2.4 और 2.5। चित्र 2.4, आंखों एवं आवर्धक लेंस से अवलोकन करना। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें दो छात्राएं आंखों एवं आवर्धक लेंस से जैव विविधता का अवलोकन कर रही हैं। अपने अवलोकनों को लिखते समय आपको ये करना चाहिए। एक, अपने अवलोकनों को एक दूसरे के साथ साझा करें, क्योंकि ये भी संभव है कि जब आप पहली बार किसी स्थान पर गए हों तो आप कुछ भूल गए हों, लेकिन आपके मित्र के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप हमेशा जांच करने के लिए वापस भी जा सकते हैं। दो, प्रत्येक बार जब आप किसी स्थान पर जाएं तो अन्य नई जानकारी को अवश्य लिखिए। यहाँ एक और चित्र दिया गया है जिसमें दो छात्र अवलोकनों को अभिलेखबद्ध कर रहे हैं। चित्र 2.5, अवलोकनों को अभिलेखबद्ध करना। तीन, उन कीटों, कृमि, पक्षियों, पौधों और जानवरों आदि जो भी आपके लिए नए हों या उनके विषय में नहीं जानते हों के रेखा चित्र बनाने या उनके चित्र लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बाद में उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने या पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल का उपयोग करके पहचानने में सहायता प्राप्त होगी। पृष्ठ संख्या 43। यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको तालिका के किसी विशिष्ट भाग के लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो उसे रिक्त छोड़ने का निर्णय लेने से पहले अपने शिक्षक से बात कीजिए। अब आप जैव विविधता विवरणिका बनाने के लिए तैयार हैं। एक, खेत के पौधों में जैव विविधता का अवलोकन। एक, अवलोकन की तिथि
1: दो,
0: स्थान
1: तीन,
0: आवास प्रकार
1: चार,
0: मौसम की स्थिति
1: पांच,
0: टिप्पणियां तालिका 2.3 फसल पौधों का विवरण क्रम संख्या
1: विवरण
0: एक उदाहरण
1: दो
0: तीन चार
1: पांच
0: एक फसल का नाम
1: प्याज
0: दो स्थानीय नाम मराठी में कांदा तमिल में वेंग्यम हिंदी में प्याज
1: तीन
0: वैज्ञानिक नाम
1: एलियम सेपा
0: चार किस्म का नाम
1: पचगंगा
0: पांच रोपण विधि प्रत्यक्ष बीजारोपण या कंद या रोपण छह विशिष्ट गुण जैसे फसल और कटाई का मौसम प्याज को अलग अलग मौसम में लगाया और काटा जा सकता है सात उपयोग कच्चा या पकाने के बाद खाया जाता है
1: आठ
0: स्केच या छायाचित्र रिक्त स्थान
1: दो
0: फलदार पौधों में जैव विविधता का अवलोकन एक अवलोकन की तिथि
1: दो
0: स्थान
1: तीन
0: आवास प्रकार
1: चार
0: मौसम की स्थिति
1: पांच
0: टिप्पणियां पृष्ठ संख्या 44 तालिका 2.4 फलदार पौधों का विवरण क्रम संख्या
1: विवरण
0: एक उदाहरण
1: दो
0: तीन
1: चार
0: पांच
1: एक
0: पौधे का नाम
1: आम
0: दो स्थानीय नाम
1: आम
0: अंबा तीन इस तालिका में आम के बारे में विवरण दिया गया है आप इसी प्रकार अन्य फलदार पौधों का विवरण लिख सकते हैं दो स्थानीय नाम
1: आम
0: अंबा
1: तीन
0: वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका चार किस्म का नाम
1: अल्फांसो
0: पांच रोपण विधि ग्राफ्टिंग या बीजारोपण छह विशिष्ट गुण जैसे फल आने का मौसम और सुगंध फल आने का मौसम गर्मी विशिष्ट तीव्र और सुखद सुगंध सात उपयोग कच्चा या फलों का गूदा या जूस बनाकर उपयोग किया जाता है आठ स्केच या छायाचित्र यहां आप इसका स्केच या छायाचित्र बना सकते हैं या लगा सकते हैं ध्यान दीजिए अल्फांसो आम को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है जो महाराष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्रों विशेषकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से उनकी उत्पत्ति को प्रमाणित करता है तीन पशुओं के चारे फॉडर के पौधों की जैव विविधता का अवलोकन एक अवलोकन की तिथि
1: दो
0: स्थान
1: तीन
0: आवास प्रकार
1: चार
0: मौसम की स्थिति
1: पांच
0: टिप्पणियां तालिका 2.5 चारा फॉडर पौधों का विवरण क्रम संख्या
1: विवरण
0: एक उदाहरण
1: दो
0: तीन
1: चार
0: पांच इस तालिका में उदाहरण के रूप में नेपियर घास या हाथी घास का विवरण दिया गया है आप इसी प्रकार से अन्य चारा पौधों का विवरण लिखिए एक पौधे का नाम नेपियर घास हाथी घास
1: दो
0: स्थानीय नाम हट्टी गोवत मराठी में
1: तीन
0: वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम परपुरियम चार किस्म का नाम
1: पूसा जॉयंट
0: पांच रोपण विधि तने की कटाई या भागों में बांटना छह विशिष्ट गुण जैसे बुवाई का समय फरवरी से मार्च पृष्ठ संख्या 45 सात उपयोग पशुओं के चारे के रूप में तथा वन्य जीवों के आवास और आश्रय हेतु उपयोग किया जाता है आठ स्केच या फोटोग्राफ यहां आप स्केच या फोटोग्राफ लगा सकते हैं चार खरपतवार पौधों में जैव विविधता का अवलोकन एक अवलोकन की तिथि
1: दो
0: स्थान
1: तीन
0: आवास प्रकार
1: चार
0: मौसम की स्थिति
1: पांच
0: टिप्पणियां तालिका 2.6 खरपतवार पौधों का विवरण इस तालिका में बरमूडा घास का उदाहरण के तौर पर विवरण दिया गया है। आप खाली स्थान में अन्य खरपतवार पौधों का विवरण लिखिए। एक, पौधे का नाम बरमूडा घास। दो, स्थानीय नाम हरल मराठी में। तीन, वैज्ञानिक नाम सिनोडोन डेक्टिलॉन। चार, किस्म का नाम पूसा जायंट। पांच, रोपण विधि, उदाहरण गन्ना, कपास, घास के मैदान और फलदार वृक्षों के बाग। छह, विशिष्ट गुण जैसे बुवाई का समय, ये गर्मी और सूखे के प्रति अत्यधिक सहनशील है। ये विभिन्न कीटों और वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास और भोजन प्रदान करता है। सात, उपयोग, खेल के मैदानों, खेल के क्षेत्र और व्यस्त यातायात वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आठ, स्केच या छायाचित्र, यहां आप इसका स्केच बना सकते हैं या छायाचित्र लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 46। पांच, कीटों में जैव विविधता का अवलोकन, अवलोकन की तिथि, स्थान एक, अवलोकन की तिथि दो, स्थान तीन, आवास प्रकार चार, मौसम की स्थिति पांच। टिप्पणियां, तालिका 2.7, कीटों का विवरण, क्रम संख्या, विवरण एक, उदाहरण दो, तीन, चार, पांच। इस तालिका में उदाहरण के रूप में आलू का विवरण दिया गया है। खाली स्थान में आप अन्य का विवरण लिखिए। एक, पौधे का नाम आलू। दो, स्थानीय नाम आलू हिंदी में। तीन, वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूब रोसम। चार, कीट का नाम एफिड कीट। पांच, कीट का वैज्ञानिक नाम माइजस पर्सिका, ग्रीन पीच एफिड, एफिस गॉसिपी, कॉटन एफिड। छह, आवास, एफिड्स आमतौर पर पत्तियों के निचले हिस्सों साथ ही पौधों की कोमल शाखाओं और कलियों पर पाए जाते हैं। सात, विशिष्ट गुण यदि है, पंख वाले और पंखहीन दोनों रूपों में पाया जा सकता है। आठ, आक्रमण का समय या मौसम, सर्दियों के पश्चात जब तापमान में वृद्धि शुरू होती है। नौ, स्केच या छायाचित्र, यहां आप इसका स्केच बना सकते हैं या छायाचित्र लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 47, क्या आप जानते हैं, आप अपने आसपास किसी एक पेड़ को पंजीकृत कर सकते हैं और प्रत्येक सप्ताह चित्र अपलोड करने के लिए सीजन वॉच की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ों को ढूंढ सकते हैं। क्या आपको सीजन वॉच में अपने आसपास के परिवेश में लगे हुए पेड़ों जैसा कोई पेड़ दिखाई देता है? क्या आपको उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी मिली? गतिविधि 6, अज्ञात की पहचान करना। यदि आपसे कोई जानकारी छूट गई है या आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आपको 2.3 से 2.7 तक की तालिकाओं में उसे अंकित करना होगा। इस संदर्भ में आप समुदाय के किसी विशेषज्ञ या जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं और इसके साथ आप AI टूल या विद्यालय पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चित्र 2.6, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अनेक स्रोतों का उपयोग कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अनेक स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। पौधों या फसलों या खरपतवारों या कीटों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए AI टूल का उपयोग करना। गूगल लेंस एक छवि पहचान इमेज रिकॉग्निशन तकनीक है जो मशीन लर्निंग और गूगल लेंस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का उपयोग करती है। इसके द्वारा आप उपकरण, मोबाइल फोन, टैब आदि के कैमरे से ली गई वस्तुओं, पाठ्य सामग्री, स्थलों की फोटो या चित्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये वस्तुओं की पहचान कर सकता है, पाठ्य सामग्री पढ़ सकता है, भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, बारकोड और क्विक रेस्पॉन्स QR कोड स्कैन कर सकता है और विभिन्न गूगल सेवाओं के साथ एकीकृत कर सकता है। आप गूगल लेंस को गूगल फोटो ऐप या एक स्वतंत्र ऐप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कैमरे को किसी वस्तु पर केंद्रित कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अनुवाद जैसे कार्य कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 48। गूगल लेंस किसी भी चित्र का विश्लेषण कर जानकारी प्रदान करता है। आप गूगल लेंस का उपयोग कर फोटो के माध्यम से पौधों, फसलों, खरपतवारों, कीटों एवं रोगों के वैज्ञानिक नाम और अन्य संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहले से फोटो नहीं ली हैं, तो आप गूगल लेंस का उपयोग करके फोटो ले सकते हैं। एक स्मार्टफोन पर गूगल लेंस ऐप डाउनलोड कीजिए और खोलिए। दो खोज स्थान सर्च बार में गूगल लेंस आइकन को ढूंढिए और उस पर क्लिक कीजिए। इससे गूगल लेंस सक्रिय हो जाएगा। तीन कैमरे को उस पौधे या कीट या छवि की ओर इंगित कीजिए जिसे आप पहचानना चाहते हैं और खोज करने के लिए शटर बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप जैव विविधता विवरणिका में छूटी हुई जानकारी भी अंकित कर सकते हैं। गतिविधि 7 जैव विविधता विवरणिका का प्रस्तुतिकरण। आपके द्वारा भ्रमण किए गए प्रत्येक स्थान पर एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करते हुए जैव विविधता पर एक प्रस्तुति बनाइए। आप चार्ट, आरेख, मॉडल या अन्य कुछ भी बना सकते हैं। याद रखिए, प्रस्तुति केवल आपके अवलोकन और आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी पर आधारित होगी। इस बात पर प्रकाश डालिए कि स्थानों और सजीव वस्तुओं में कई भिन्नताएं हो सकती हैं। यही तो जैव विविधता है। आपका प्रस्तुतिकरण दो भागों में होगा। भाग एक, आपके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारांश तैयार कीजिए। अभी आपने जो जानकारी भिन्न भिन्न तालिकाओं में अंकित की है, वो भिन्न भिन्न समय पर किए गए भ्रमणों पर आधारित है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी आगंतुक को अपने आसपास की जैव विविधता के बारे में बताना है। सभी तालिकाओं से जानकारी को संयोजित कर उस आगंतुक के लिए सारांश बनाएं। कुछ मार्गदर्शक प्रश्न इस पृष्ठ पर दिए गए हैं। आप अन्य संभावित प्रश्नों और अपनी टिप्पणियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों पर विचार कीजिए। उत्तरों को स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए आप उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। एक, आपके आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न पौधे कौन से हैं? दो, कौन से पौधे सभी मौसमों में उगते हैं और कौन से मौसमी हैं? पृष्ठ संख्या 49। तीन, क्या सभी फसलों और फलों की उपज एक ही मौसम में काटी जा सकती हैं? चार, क्या सभी पौधे एक ही मौसम में वृद्धि करते हैं? पांच, क्या पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं? यदि हाँ तो कैसे? छह, क्या एक ही प्रकार का चारा साल भर उपलब्ध रहता है? क्या वे केवल कुछ ही मौसम में ही उपलब्ध होते हैं? सात, क्या सभी पौधे खरपतवार से प्रभावित होते हैं? आठ, क्या कुछ खरपतवार उपयोगी हैं? कृपया कुछ खरपतवारों के नाम बताएं और उनके उपयोग का वर्णन कीजिए। नौ, क्या सभी पौधे किसी न किसी प्रकार के कीटों से प्रभावित होते हैं? दस, क्या पौधे कुछ विशेष मौसमों में विशेष कीटों से अधिक प्रभावित होते हैं? ग्यारह, आपने समुदाय के लोगों से क्या जानकारी एकत्र की? उदाहरण के लिए, पौधों का औषधि के रूप में उपयोग, चारे के रूप में या पवित्र पौधे आदि। इस तरह आप आगंतुक को पूरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैव विविधता विवरणिका, पेड़, कीड़े, चित्र 2.7। जैव विविधता विवरणिका पर प्रस्तुतिकरण। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें छात्र छात्राएं अपने अध्यापक के सामने जैव विविधता विवरणिका का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 50। भाग 2, आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से आगे बढ़िए। अब उन तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने आसपास की जैव विविधता के बारे में गहरी समझ के लिए एकत्रित की गई जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी प्रस्तुति में कुछ आरेख और कुछ स्पष्टीकरण सम्मिलित होंगे। इसे तैयार करने के रोचक तरीकों के बारे में विचार कीजिए। चित्र 2.7। कुछ मार्गदर्शक प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त और प्रश्नों पर भी विचार कीजिए। 1. क्या आपने एक स्थान पर अन्य की तुलना में अधिक सजीव वस्तुएं देखी? 2. आपने जिन स्थानों का भ्रमण किया वहां आपने कितने प्रकार के पौधे और कीट देखे? 3. क्या आपने एक से अधिक स्थानों पर एक ही प्रकार के कीड़े, कीट या कृमि देखे? 4. क्या आपने इस गतिविधि के लिए किसी AI टूल का उपयोग किया? यदि हाँ तो कौन से और कैसे? 5. क्या आपने जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया? आप अपनी प्रस्तुति के माध्यम से जो निष्कर्ष या विचार साझा करना चाहते हैं उसे सम्मिलित कीजिए। मैंने दूसरों से क्या सीखा? विशेषज्ञों के साथ बातचीत। आपने विशेषज्ञों के साथ उन सभी उपायों पर चर्चा की है जो इस क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा उपाय प्रभावी होगा? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 51। समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत। आपने ग्रामीण क्षेत्र में किसी किसान, शहर के किसी नर्सरी कर्मचारी, माली या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के किसी समुदाय के सदस्य से बात की होगी। उस जानकारी के अनुसार पिछले 10 या 20 वर्षों में जैव विविधता में किस तरह से परिवर्तन आया है इस बारे में लिखिए। रिक्त स्थान। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा? ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया इसका अनुमान लगाइए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर अंकित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त गतिविधियां की हैं तो उनकी संख्या और समय भी जोड़िए। यह संभव है कि आप अपनी समय सारणी के अनुसार एक ही स्थान पर एक से अधिक बार गए हों। यह भी संभव है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए कई बार वापस गए हों। प्रत्येक गतिविधि पर बिताए गए कुल समय की संख्या की गणना कीजिए। यहाँ एक समय रेखा अंकित की गई है। इसमें 7 गतिविधियों के लिए स्थान दिया गया है और उनकी समयावधि लिखने के लिए भी स्थान दिया गया है। समयावधि, कालांश, गतिविधि। पृष्ठ संख्या 52। क्या आप जानते हैं भारत में कई जैव विविधता धरोहर स्थल BHS हैं जो अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। इन स्थलों का उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने में उनकी महत्ता को पहचानना है। भारत में कुछ उल्लेखनीय जैव विविधता विरासत स्थल इस पृष्ठ पर लिखित हैं। बिंदु 1. कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव में इमली के पेड़ हैं जो 400 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बिंदु 2. बिहार में गोगा बील पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है जहां पक्षियों की 90 से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से कई मध्य एशिया जैसे सुदूर स्थानों से आती हैं। बिंदु 3. पश्चिम बंगाल के टोंगलू में ऐसे पौधे हैं जो आपको संसार में कहीं और नहीं मिलेंगे। बिंदु 4. हैदराबाद की अमीनपुर झील 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है भले ही ये एक व्यस्त शहर के बीच में है। बिंदु 5. असम में माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसमें सत्रास नामक मठ है। बिंदु 6. केरल में मिरिस्टिका स्वैम्प प्राचीन जायफल के पेड़ों का घर है जो एक मसाला है जिसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं। बिंदु 7. कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व बंगाल के बाघों और हाथियों जैसे अन्य बड़े जानवरों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग है।
1: बिंदु 8।
0: पश्चिम बंगाल में चिल्की गढ़ कनक दुर्गा सेक्रेड ग्रोव में पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले विशेष पौधे हैं। ये वन स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित है।
1: बिंदु 9।
0: अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में लोग अनोखे तरीके से चावल और मछली का एक साथ उत्पादन करते हैं।
1: बिंदु 10।
0: मेघालय में माओ फलांग सेक्रेड ग्रोव स्थानीय जनजातियों द्वारा संरक्षित हैं और दुर्लभ पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों से भरा है। पृष्ठ संख्या 53। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ। आप अपने घर और अन्य स्थानों पर जैव विविधता का अवलोकन जारी रख सकते हैं। अपनी टिप्पणियों का दस्तावेजीकरण कीजिए और एक प्रकृति पत्रिका, नेचर जर्नल या डिजिटल स्क्रैप बुक बनाइए। ध्यान दीजिए कि आप शहर में चील जैसे पक्षियों और नेवले जैसे जानवरों को भी देख सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन जानवरों को शहरी वन्य जीव के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया है। अपने घर में आने वाले पक्षियों का निरीक्षण कीजिए। ध्यान दीजिए कि वे कैसे दिखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। उनका स्थानीय नाम एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। इसके साथ ही पक्षियों के बारे में जितना हो सके उतना पता लगाइए। परिवार के सदस्यों और समुदाय के बुजुर्गों से उन पक्षियों और जानवरों के बारे में पूछिए जिन्हें वे बचपन से देखते आ रहे हैं। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको क्या करने में आनंद आया? 2. आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 3. अगली बार आप क्या अलग करेंगे? 4. आपके द्वारा जैव विविधता विवरणिका का क्या महत्व है? 5. परियोजना से संबंधित अन्य कौन सी नौकरियां हैं? अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। 6. आपके द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधि से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण वन अधिकारी, वैज्ञानिक और संरक्षणवादी हैं। पृष्ठ संख्या 54। अपने पर्यावरण और पृथ्वी का संरक्षण कीजिए। यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। पर्यावरण, यहाँ पर्यावरण से संबंधित चित्र दिया गया है। हरित ऊर्जा, यहाँ हरित ऊर्जा से संबंधित चित्र दिया गया है। पौधे, यहाँ पौधों से संबंधित चित्र दिया गया है। ग्रह, यहाँ पृथ्वी ग्रह से संबंधित चित्र दिया गया है। यहाँ 5 चित्र दिए गए हैं। यहाँ सजीव और निर्जीव वस्तुओं से संबंधित चित्र दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ प्राकृतिक संसाधन से संबंधित चित्र दिया गया है। भोजन एवं निवास, यहाँ भोजन एवं निवास से संबंधित चित्र दिया गया है। हमारा घर, यहाँ घर से संबंधित चित्र दिया गया है। संरक्षण, यहाँ पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित चित्र दिया गया है। उत्पादन, यहाँ उत्पादन से संबंधित चित्र दिया गया है। वृद्धि, यहाँ पौधे की वृद्धि के संबंध में चित्र दिया गया है। बचाओ, यहाँ आवश्यक चीजों को बचाने के बारे में चित्र दिया गया है। इस पृष्ठ पर अपने पर्यावरण और पृथ्वी का संरक्षण करने से संबंधित चित्र दिए गए हैं। इसके साथ ही भाग 2 समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर मुइनुल हुसैन। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गीतिका उनियाल जी, जो कि FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
4: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनो शारदा 90.8 FM इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे, हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
3: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
4: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियोज बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट्स बनाएं, स्क्रिप्ट्स बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
3: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट

0: जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
0: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI, अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा
1: जी,
0: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, लेकिन आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि AI इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 FM, हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है, हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि AI जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी AI अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुँच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रता बदलेगी तो भाषा बदलेगी। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुदित कर अपनी भाषा में उन तक पहुँचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है
0: जी।
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़ें। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है, हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में AI की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं, क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट एआई की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं, इस बारे में आप मुझे थोड़ा
0: देखिए। जब आपने कहा कि आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
1: जी,
0: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली।

0: समुदाय में, यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर रही है। AI उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, AI आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप AI की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा, तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है, वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर, आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या,
1: बिल्कुल
0: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है, उसने सिर्फ मदद की है।
1: जी
0: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा AI कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल।
0: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं, अगर सही मायने में देखा जाए।
1: हाँ, सब अपने आप में
0: पूर्ण है, यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं, तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
1: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं, ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या AI की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आपको, अब जैसा कि आज मैं सिर्फ AI नहीं कहूंगी, यहाँ पर आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
1: बिल्कुल,
0: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बाकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें, तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
0: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इसमें यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं, AI की मदद से आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और देखिए जो समय आप आधा घंटा लगाते उस गाने को ढूंढने में, AI टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
1: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
0: तो कहने का अर्थ है कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का, वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना, वो सब कुछ विश्वसनीय हो।
1: क्रेडिबिलिटी
0: बहुत जरूरी है। तो वो AI पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ AI की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, AI की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो AI पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग AI पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
1: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
0: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं, और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता। तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने AI के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल पूछ लिए।
1: जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
0: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
1: जी,
0: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
1: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज़ है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज़ सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
0: जी, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी। मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा। तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
1: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
0: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर, माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
1: जी,
0: तो जो हमें यहां सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं। और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
1: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं, तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
0: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है
1: जी।
0: पहले एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को, या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना, वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं
1: जी।
0: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
1: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है
1: जी। बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है, तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है? ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
0: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
1: जी,
0: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
1: बिल्कुल,
0: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
1: जुड़ गए हम, जुड़ गए।
0: रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
1: जी।
0: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार, अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है, ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम, हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
0: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशंस हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर ख़ास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज़ की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हों या कोई भी FM स्टेशन क्यों ना हो, ज़रूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, ज़रूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज़ की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज़ का अपनी ही आवाज़ में, यानी कि अपनी दिल की आवाज़ के ज़रिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
1: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
0: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला, मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ, जिस भी क्षेत्र से, तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई, वो मांग कर यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
1: बिल्कुल,
0: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
1: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
0: जी,
1: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
0: तो अभी चलो।
2: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: व्हाट इज द शिट, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेफ, इट रियली हर्ट्स।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: करके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
4: 90.8 एफएम। राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
2: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
1: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं।
2: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
2: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: Chick-a-chick-a-bum, chick-a-bum-bum-bum, chick-a-chick-a-bum.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Varun Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
5: ये मीनू है मेरे बेस्ट फ्रेंड और ये प्रशांत है मेरा तेरा
6: चले
5: चले

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, tum itni tension mein kyun ho? Aakhir hua kya tumhe?
2: Rohan, ab kya batau? Itne sare course hai, samajh nahi aa raha bachelor's mein admission kahan lu?
1: Acha Priya, ye batao ki tumhe life mein karna kya hai?
2: Mujhe main chahti hu meri awaaz puri duniya mein goonje. मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ. मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ. मैं चाहती हूँ.
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो. तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो.
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा.
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें.
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है.
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं. और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है.
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: ऑडियो क्रेडिट्स Performed by Banjare and Simran Kaur. Written by Banjare and Simran Kaur. Composed by Banjare. Music production by Ronnie. So let's enjoy it. All your Suno Sharda 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Sono Shardana।

0: धुन को ही चाहत न चाहत से मारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा।
1: अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
1: केवल माँ का दूध
2: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
1: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
2: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
3: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
2: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
3: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं, अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
7: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
8: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: नमस्कार मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: नाम तो सुना ही होगा।
7: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
8: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
9: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
8: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
9: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
8: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
9: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशन तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
8: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
9: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
7: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
0: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM।
7: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
7: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
7: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
7: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
10: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
11: So where are you? The world is here at Sharda University.
12: शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखें, सुने, जाने, समझें और बढ़ाएं हाथ। बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
13: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी